रेडियो हर पल आपके साथ।

0: सी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुंदर सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे आदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है मौजूदा प्रणाली की अपग्रेड होने से एआई के माध्यम से सड़कों पर वर्जित

0: या खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, या फिर ख़तरनाक ड्राइविंग या रेड लाइट पार करना। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ा दिया है। ये वित्तीय साल इस गुरुवार 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस तरह मॉरिशस का कोटा 12,910 से बढ़कर 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू हो गया है, जो 6.3% की बढ़ोतरी है। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार मॉरिशस ये अतिरिक्त 813 टन चीनी बेच पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुन लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई है। इनके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण बताया जाता है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होती रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्रांतों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा।
1: You're listening to RM3 Radio, Man.

और हमने बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं।

और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो, वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं।

और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा। और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है।

क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है? वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो? तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे? जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहे।

ये लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया

कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं।

वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे, सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे।

फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा ना माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो।

मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताबे बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रस्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सकें, और तुम उन्हें देखते हो कि बजाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते।

और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश और बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।

और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से

0: रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक जात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मौजज़े हमेशा सब्र के बाद होते हैं। जब हमें नज़र आता है कि कुछ भी हमारे हक में नहीं है, तब अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो ज़ाहिर हो, मगर अल्लाह तो वो चीज़ें भी देखता है जो हम नहीं देख सकते। वो तो माजी, हाल और मुस्तकबिल सबका रब है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपना दर्द उसे बताएंगे और वो हमारी मदद नहीं करेगा। वो रहमान है, रहीम है, करम और रहम करने वाला है।

मौज़े सामीन, माहे रबीउल आखिर चल रहा है और आज भी हम बात करेंगे गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। फरमाने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह है, मेरे नज़दीक भूखों को खाना खिलाना और हुस्ने इखलाक कामिल ज़्यादा फजीलत वाले आमाल हैं। फिर इरशाद फरमाया, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, अगर सुबह को मेरे पास 1,000 दीनार आएं तो शाम तक उनमें से एक पैसा भी ना बचे।

ज़िक्रे औलिया से दिल को उजाला मिलता है, राह हक में चलने का हौसला मिलता है। इल्म अमल की शमा जलाई जिसने ज़माने में, आज भी उसकी तालीम से रास्ता मिलता है। गौसे आज़म का पैगाम यही समझाता है, बंदा अपने रब से जुड़े तो सुकून पाता है। मौज़े सामीन, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बातों से मेरात उनकी वसीयतों और इस्लाही दर्स हैं, जिसमें मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की दावत दी जाती है। उनकी बातों का मुख्तसर मतलब है उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात और उनकी करामात और अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र किया जाए।

गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतों में दिल को दुनिया की बेजा मोहब्बत से पाक करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान दुनिया के काम छोड़ दे, बल्कि ये कि दुनिया हाथ में हो दिल में ना हो। माल हो तो हलाल तरीक़े से कमाया जाए, इख्तियार हो तो इंसाफ के साथ इस्तेमाल किया जाए, नेमत मिले तो शुक्र किया जाए और आजमाइश आए तो सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक अमली इजहार उसकी मखलूक़ के साथ हुस्ने सुलूक भी है। भूखों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, कमज़ोर के साथ नरमी करना, किसी का दिल ना दुखाना और अपने मामलात में दयानतदारी इख्तियार करना, ये सब एक मुसलमान के किरदार का हिस्सा है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में ज़ाहरी इबादात के साथ बातिनी इस्लाह और हुस्ने अख़लाक़ को भी बुनियादी अहमियत हासिल है।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें इतना अता कर जितनी तेरी शान है, या रहमान मुश्किलें आसान कर जितना तू रहीम है, या रज़ाक इतना कुशादा रिस्क अता कर जितना तू रज़ाक है। ऐ अल्लाह, कभी अपनी रहमत से मायूस ना करना और हमेशा अपनी रहमतों के इस साए में रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में इस सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 10:50 हो चुके हैं दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात सभी को, सभी जिनको भक्ति में बहुत आस्था है और उस शक्ति में पूरा विश्वास है। आज सोमवार का दिन है, महादेव का दिन। सोमवार वह दिन होता है जब हम शिव की कृपा से सप्ताह की शुरुआत करते हैं, और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेशा के नाम से। तो चलिए दिल से जुड़ते हैं और भक्ति के इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम श्री गणेश का स्मरण करेंगे, फिर माँ दुर्गा शक्ति को नमन करेंगे।
1: RM3 Radio.

0: तो 10:55 हो चुके हैं। माँ दुर्गा सिर्फ देवी नहीं है, शक्ति है। जब जीवन में संकट आता है तब माँ दुर्गा हमें साहस देती है। माँ दुर्गा का सिंह हमें सिखाता है, भले ही रास्ता कठिन हो हमें डरना नहीं है। इस सोमवार अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, हर चुनौती को सामना कीजिए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम तो सब एक साथ बोलेंगे, जय माता दी, जय अम्बे गौरी।
1: RM3 Radio.

11:03 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति के साथ। सोमवार के देवता महादेव जी, उन्हें कहा जाता है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले और किसी से कोई नाराजगी ना रखने वाले। उन्हें सोना चांदी नहीं, सिर्फ आपका सच्चा मन, सच्चा प्यार चाहिए। शिव भस्म में बैठकर सिखाते हैं कि संसार की हर चीज अस्थाई है, जो हमेशा चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, दुनिया में कुछ

0: कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ है वो सब कुछ अस्थाई है। सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपके संस्कार, आपका ज्ञान, बस यही आपके साथ रहेंगे। और वे हैं नीलकंठ, जिन्होंने कहा जहर पीकर भी शांति सिखाई, और कहा कितना भी कोई आपको बुरा भला कह दे, आपको अपनी शांति नहीं खोनी। आइए इस सप्ताह को जितनी भी हमारे बीच में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको हटा देते हैं, उसको पी जाते हैं और एक शांति का ओम नमः शिवाय बोलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर भजन है ये लता मंगेशकर की आवाज़ में। लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन भी है और जिन्हें हम कहते हैं सभी लोग माँ सरस्वती की आवाज़, तो हम सब यही चाहेंगे इस देवता और ये माँ सरस्वती की दी गई लता मंगेशकर को आवाज़ को आप सब सुने।
1: RM3 Radio.

0: 11:10 हो चुके हैं और अभी आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति के साथ। अब बात करते हैं हरि विष्णु की। विष्णु पालन करता है, जहाँ शिव परिवर्तन करते हैं वहीं विष्णु स्थिरता देते हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं, यानी अराजकता के बीच में शांत रहना। जब हमारे घरों में बहुत तकलीफें आ जाती हैं पर हम उस तकलीफों के बीच में ही बह जाते हैं और अशांत हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होता चला जाता है, यही परमात्मा सिखाते हैं कि आपके ऊपर जहाँ पे वो शैया में लेटे हुए हैं शेषनाग के, उनके ऊपर से हर वक्त कहते हैं कि जहर गिरता रहता है पर फिर भी हरि यानी कि विष्णुदेव कहीं पे भी कुछ नहीं कहते और कहते हैं गिरने दो, क्योंकि वो जहर कहाँ जाता है, पानी में जाता है और वही गंगा बन के उस जहर को भी ख़त्म कर देती है गंगा मैया और वो पानी पानी बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब भी परिवार में कहीं पे भी सेहत में काम में कोई परेशानी आए, कोई अस्थिरता आए, अपने के साथ रहो, अपनी परेशानियों के बीच में खुद के साथ लड़ो और खुद को खड़ा करो वापस। और सिर्फ खड़ा ही नहीं करना है, हमें हरि विष्णु के साथ जुड़ के उनसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें सच्चा ज्ञान, सतबुद्धि, ईश्वर की शक्ति और भक्ति साथ साथ दें।
1: RM3 Radio.

0: 11:17 हो चुके हैं भक्तों। एक बहुत प्यारी बात हमारे धर्म में कही गई है, कहा गया है सत्य एक है, उसे अलग अलग नामों में पुकारा जाता है। जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश सब एक ही ईश्वर के रूप हैं। आइए सबके लिए प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसी संसार में इस ईश्वर ने हम सबको एक ही तरह से, कहते हैं, निखारा है, एक ही जैसा मुंह दिया है, एक ही जैसी आंखें, ये बस रंग फर्क हो सकता है पर हमारी एक स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है, क्योंकि हम मानव हैं और मानव हर किसी के दुख को समझता है, चाहे वो पत्ते हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, जल हो। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना होती तो हमारी ज़िंदगी में था क्या? हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ प्रेम और प्यार है, और उसी प्रेम और प्यार की वजह से हम सब आज एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। तो हम क्यों ना उस ईश्वर की अनुकंपा को एहसास करें, उसकी भक्ति का एहसास करें, हमें सबको उसकी शक्ति और भक्ति मिलती रहे।
1: RM3 Radio.

भक्तों, 11:25 हो चुके हैं। ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, आपके दिल में भी है। जब भी मन भारी हो, सच्चे मन से पुकारिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। वो तो चाहते हैं हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनते? सुनते हैं, बस हमारा मन सच्चा नहीं होता। जब बच्चा शैतानी करता है तो माँ बाप कहते हैं ठीक है, अपने हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। पर जहाँ पर हमें एहसास होता है हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तो वहाँ पे वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो आप सुन रहे थे भक्ति में शक्ति, मैं थी आपके साथ पूनम। अगले सोमवार सुबह 10:45 पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, शक्ति और भक्ति से डूबे रहिएगा। मैं सभी को कहूँगी हर हर महादेव। मेरे प्रोग्राम के बाद आप सुन पाएंगे एहसन का चाइनीज़ प्रोग्राम। इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल भजन को। अपनी भक्ति में शक्ति रखिएगा और हमेशा भक्ति में डूबे रहिएगा। RM3 Radio.

阳光正好，微风不燥，希望你都享受紧呢个时刻。下一首歌《四季》。

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सुबह NTC की कई लाइनों पर कामकाज में रुकावट आई। 100 से ज़्यादा कर्मचारी नौकरी पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से कई बसें डिपो से नहीं निकल पाई। इस विवाद की मुख्य वजह नया रोस्टर है, जिसका श्रमिक संघ विरोध कर रहे हैं। वे खास तौर पर काम करने के घंटे बढ़ाने और वेतन में कटौती का विरोध कर रहे हैं। मॉरिशस कमर्शियल बैंक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है। कीनिया के हाई कोर्ट ने जेट पेट्रोलियम को आदेश दिया है कि वो मॉरिशस के इस बैंक को 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 304 मिलियन रुपए चुकाए। इसमें ब्याज और कानूनी खर्च शामिल नहीं है। ये विवाद 2015 के आखिर का है, जब MCB को जेट पेट्रोलियम के लिए फाइनेंसिंग सुरक्षित करने वाले 5 लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान करना पड़ा था। कंपनी द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद मॉरिशस के इस बैंक ने अपने पैसे वसूलने के लिए 2016 में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक का बकाया चुकाया था। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैम्पलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल, तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खास तौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त। फिर थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 67 साल के 68 years old जनाब अब्दुल कादिर जहांगीर, जनाब अब्दुल कादिर जहांगीर इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे पोर्टलुई के अलीसान फ्यूनरल सेंटर से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.

सुहाना सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। मैं हूं रत्ना, आ पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर जहां पर मौसम तो सुहाना नहीं पर गाने बहुत ही तरोताजा, बहुत ही सुहाने गाने आपके लिए चुनकर लाए हैं और इस

प्यारे से गीत के साथ हमने की है एक बहुत ही प्यारी सी पहल, किस्मत फिल्म का लिया हुआ ये गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। चलिए पुराने गीत हो या फिर 70s 80s का कोई गाना, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये गाना बहुत दिनों से बज रहा है आपके दिमाग में और अगर इस गीत को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 या फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5250-6200 पर। आप अपने प्यारे से मैसेज को हम तक ज़रूर पहुंचाइए। प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपके यहाँ मौसम कैसा है और इस प्यारे से सफ़र में चलिए लेते हैं एक और ऐसा प्यारा सा गाना जो है 50s के ज़माने का, 16वां साल फिल्म से लिया हुआ गीत हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, सुहाना सफर इस जिंगल की ट्यून भी है अपना दिल, इसी पर आधारित। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही खास हम खास बनाएंगे, क्योंकि आज भारत की कोकिला का जन्मदिन। जी हाँ, लता जी का जन्मदिन आज 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ। और आज के इस दिन को हम बिल्कुल खास गीतों के साथ सजाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, सुबह सवेरे से काफ़ी जगहों पर बारिश का मौसम है, बादल घिरे हुए हैं, और ऐसे बरसाती मौसम में कुछ मज़ेदार पुराने गाने जो इस सफ़र को और भी बेहतरीन बनाएंगे। और लता जी की कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम को हम डेडिकेट करना चाहेंगे लता जी के फैंस के नाम। और बिल्कुल देखा जाए तो आज का दिन एक बहुत ही ख़ास दिन, क्योंकि भारत में जन्मी एक ऐसी कोकिला जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने गायकी में अपना कदम रखा, और इसी के साथ उन्होंने कई सारे ऐसे गाने हमें दिए। चलिए, बहुत ही पुरानी मूवी जो 1949 के ज़माने में आई थी, तराना। और इस फिल्म में लता जी ने गाना गाया था तलत महमूद के साहब। तो आइए, तलत महमूद साहब और लता जी की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना आपके नाम करेंगे। और आज बिल्कुल सीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पॉइंट लास्को से। आज अपने भतीजे अश्वम को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देना चाहती है, और उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है अभी थोड़ी ही देर में हम चलाएंगे, लक्ष्मण परिवार, राम भोजन परिवार और सुहाती परिवार के लिए। तो सीता जी बस बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज लता जी का जन्मदिन है, साथ ही साथ सत्य साई बाबा जी का भी जन्मदिन है, और साथ ही साथ आपके भतीजे अश्वम का भी जन्मदिन है। तो इस दिन को हम बहुत ही प्यार भरे गीतों के साथ सजा रहे हैं।

0: का सफर
1: सुहाना सफर और बिल्कुल इस वक्त दिन के 12:25 हो चुके हैं। वैसे किसी ने हमें फोन पर कहा कि आज साईं बाबा का भी जन्मदिन है, फिर तो मुझे याद आया कि आज थोड़ी है, उनका जन्मदिन तो नवंबर के महीने में है। पर चलिए कोई बात नहीं, जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनको बहुत ही प्यार से हमारी सारी टीम उनकी हमारी सभी टीम की ओर से उनको बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद। और चलिए यहाँ पर ना केवल मॉरिशस में पर दुनिया भर में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का नाम भी आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जरूर जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं रॉय राजपूत जो है ब्राइटन से, सिंगापुर से, बिल्कुल सिंगापुर फिल्म का ये गाना आपने हमें कहा चलाने के लिए लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, ज़रूर आपके नाम करेंगे ये गाना अभी थोड़ी ही देर में। और इसी के साथ यहाँ पर राधा बाल गोबिंद हमारे साथ जुड़ चुकी है मोचीदा से और आपकी सभी सहेलियों के लिए, खासकर शोभा जी जो हमेशा सुलफेरिनों से हमारा साथ देती हैं, और साथ है आपकी प्यारी बहन वीना जी और जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं उन सभी का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हुए निशान का ये गाना हम करेंगे आपके लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में। और ये गाना आपने कहा खास हमारे लिए, ओए होए गाल लाल।

वैसे यहाँ पर हमें किसी ने मैसेज किया है, लिखते हैं पूनम जी, क्या यार इतने पुराने गाने, मंडे है आज, थोड़ी मस्ती और रोमांटिक गाने डाल दो आप प्लीज। ओए होए, थैंक यू सो मच। वैसे पूनम नहीं, आज माइक पर रत्ना साथ दे रही है। जी हाँ, पुराने गानों के साथ कुछ नए गाने भी आपके लिए जरूर हम जोड़ेंगे, रोमांटिक गाने। और चलिए, यहाँ पर बिल्कुल 12:34 हो चुके हैं। वैसे ये फरमाइश हमारे श्रोताओं की ओर से आती है और ऐसे गाने भाई वे मांगते हैं तो उनका दिल खुश करने का हमारा कर्तव्य बन जाता है। और चलिए इसी के साथ, आपको भी अगर कोई गाना सुनना है तो ज़रूर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं ऑन 5250 6200, या फिर आप हमें फ़ोन कॉल पर हमारे साथ

साथ बात कर सकते हैं 4028070 एंड डेफिनेटली हम आपके गीतों को ज़रूर चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे लिसनर्स हैं जो पुराने गीतों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, और दोपहर का जो समय होता है वो पुराने गीतों को सुनने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही मूड बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक और प्यारी सी आवाज़, जी हाँ, लता जी, उषा जी, मीना मंगेशकर है तो ये पुराना ही गाना मदर इंडिया से लिया हुआ ये गीत, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गीता जी जो मोताइलोंग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और वाकवा से फुलवंती जी भी साथ दे रही हैं, उनके पति हैं देवानंद, बेटी भावना, बेटा उषन, और नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदा जी आप है पाई से, आपके पति, साथ है चार बच्चे, ना आपकी बहू, नाती पोतों की ओर से, और आप मदर इंडिया का ये गाना सुनना चाहती हैं तो ज़रूर हम आपके लिए ज़रूर चलाना चाहेंगे ये गीत। अगेन आई एम सो सॉरी अगर जो पुराने गाने इतने ठंडे ठंडे गाने सुनना पसंद नहीं करते, पर कोई बात नहीं, हम आपकी भी लिस्ट, आपकी भी फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। पर ये गाना भी कुछ भी कह लो है तो बहुत ही मज़ेदार गाना।

0: RM3 Radio.
1: फिल्म है अजनबी, किशोर कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज, 70s के जमाने का ये गाना।

हाँ बिल्कुल जाएगा उषा जी के लिए, ब्रह्मस्थान से हमारा साथ दे रही हैं। चलिए रहम कर दिया आप पर ये गाना, होप आपको पसंद आएगा, रोमांटिक भी है, मौसम को लगता हुआ भी है।

0: सुहाना सफर।
1: जी हाँ, सफर सुहाना तब है जब आपका सुहाना साथ हमें मिलता है, और इस सुहाने सफर में पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट ये हमारा बिल्कुल कहते ना इनक्रेजमेंट होता है, हमें पता चलता है कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। और बिल्कुल इसी के साथ ये मॉरिशस में तो इस वक्त दोपहर के बिल्कुल 12:44 यानी 12:44 ऑलरेडी, और दोपहर के 2 बजे तक हमें आपका साथ देने के लिए माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। यूजुअली मैं ये प्रोग्राम करती नहीं हूँ, पर कभी कभी मौका मिल जाता है आपकी सेवा में कुछ ऐसे मज़ेदार गाने चलाने का। सो रेडियो मनोरंजन पर इस वक्त बहुत सारी मस्ती के साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने जो आपकी फरमाइश के गीत हैं, और यहाँ क्या क्या टाइटल हमें मिल रहा है। कोई बेटी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, तो यहाँ पर भाई कोई हमें अम्मा कह के पुकार रहा है। चलिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट, भाई हमें बहन बना लो, भाई बना लो, भाई तो नहीं बना सकते, पर चलिए अम्मा बना लो।

और इसी के साथ प्यार भरे गीतों के सफर में ये प्यारा सा गाना जो है फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से लिया हुआ गीत, और ये जाएगा शोभा जी के लिए जो लाल माटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है और कहती हैं हो सके तो प्लीज़ ये गाना हमारे लिए ज़रूर चला दीजिए। बिल्कुल, हमारी मेहनत तो हम कोशिश लगातार करते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मिल नहीं पाते, पर हमारी कोशिश जारी रहती है कि हम कुछ भी करके हुक और बाय क्रूक आपके लिए वो गाना कहीं से भी ढूंढ कर ला कर आपके लिए चलाए, आपके दिल को खुश करना है। और चलिए, वैसे ये गाना हमें मिल चुका है शोभा जी, तो ज़रूर हम ये गाना आपके नाम करना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली ये गीत आपको अगर खुश कर जाए तो ये गाना आपके लिए भी।

0: RM3 Radio. Radio.
1: मुकद्दर का सिकंदर लता जी की प्यारी सी आवाज़, और ये गाना जाएगा कल्याणी जी के लिए जो थ्री ओलेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बिल्कुल उनके सभी परिवारों के नाम जोड़ना चाहेंगे ये प्यारा सा गीत।

0: RM Free Radio. Radio. Radio.
1: सुहाना सफर एंड द सफर इज ऑन. बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं सफर में और यहाँ पर जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील, संगीता एंड विज. साथ ही साथ वैनकूवर कनाडा से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं किरण पुरी, जीजी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी एंड काला राम कारीगर. थैंक यू सो सो मच. बस होप यू विल हैव अ ब्यूटीफुल टाइम विद दिस ब्यूटीफुल सफर. एंड हम भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जन्मदिन मना रही हैं आदिया. आदिया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ. और यहाँ पर रीमा बर्तन भी, उन्हें बहुत सारी विशेस, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद और खासकर कालिया चेटी परिवार की ओर से ढेर सारी विशेस जाती हैं आदिया के लिए. विद दिस चलिए ये प्यारा सा गाना हम ज़रूर चलाना चाहेंगे. और ये गाना हमारे लिए किसी ने मांगा है और हम तो कहेंगे भाई आप लोग साथ देते हो यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है. और आपने ये गाना खास हमारे लिए मांगा, फिल्म है आप आए बाहर आई. ओहो चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना हम ज़रूर करना चाहेंगे मनीता जी के लिए जो लाफोंस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. उनकी प्यारी ममा है सुमंती, बहनें हैं आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाई है सत्यम, भाभी है उषा जो रहते हैं सरशुलिया विलाज से. एंड डेफिनेटली www.mbcradio.tv के माध्यम से रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. RM3 रेडियो जो है सबका फेवरेट रेडियो. और इसी के साथ चलिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज आप सभी के लिए. एंड आई बिलीव आज जितने भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं भाई आपके लिए ये गाना है खासम खास, आप आए बाहर आई.

याद दिला दे, यही गाना हमें जोड़ेगा हमारे सुबह के 1 बजे के समाचारों के साथ, और ये कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा बिल्कुल समाचारों के बाद। तो

0: your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सपैर के ठीक 1 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
2: देश के पूर्वी प्रांत लावांचुया में आज सुबह 7:45 के करीब एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई। विव्याजुआपर और झील के बीच सफर तय करने वाली एक एनटीसी बस एक लॉरी से जा टकराई। हादसे में 70 वर्षीय लॉरी चालक की मौत हो गई। कई लोग घायल रहे हैं जिन्हें फ्लाक के साज अस्पताल ले जाया गया। खबरों के अनुसार 14 लोगों को घर जाने दिया गया है जबकि 6 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुठल देखने को मिली।

0: की कई बस लाइनों में उठल पुठल देखने को मिली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं रहा। उदाहरण के लिए मोहवाक्वा को हिले, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% का चिंताजनक स्तर तक पहुंच सकता है। और विदेश में चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक दूरस्थ हिस्सा, उसका पिछले 20 वर्षों से खदान का कचरा फेंके जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने बताया कि शांक्सी प्रांत के निंगवू काउंटी में मिंग राजवंश के दौर की इस प्राचीन दीवार के पत्थरों को कोयला खदान के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. Center 94.
0: Marijani Rosbel mein 64 saal ke 64 year old Shri Ramesh Munia, Shri Ramesh Munia जो उत्तम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान मागजानी रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। नंबर 5 एवेन्यू फोवेट सिडनी कैटरबोन में 68 साल के 68 year old श्री सत्यराम धनुकधारी, श्री सत्यराम धनुकधारी जो प्रदीप से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विद्या धनुकधारी के मकान नंबर 5 एवेन्यू फोवेट सिडनी कैटरबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए त्रियानों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। और नंबर 42 रुट कोकोटरी रुशबुआ में 69 साल के 69 year old श्री मुनीलाल दुला, श्री मुनीलाल दुला जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल मंगलवार को दिन के 10 बजे इनके बेटे नेश्वर दुला के मकान नंबर 42 रुट कोकोटरी रुशबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिदे प्रैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 You are listening to RM3 Radio.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन RM3 रेडियो पर। जी हाँ, मैं रत्ना आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और इस वक्त 1:10 हो चुके हैं और पुराने गीतों के सफर में चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर, कुछ नए कुछ पुराने गाने, मजेदार बातें और आपकी चुलबुली मैसेजेस को पढ़ते हुए ये सफर और भी मजेदार और भी लाजवाब बनता जा रहा है। यहाँ पर बाबू अनाथवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं काट्रोपोन से और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक ऐसे श्रोता है जो हर प्रोग्राम को सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए अनाथवा फैमिली के नाम हम करना चाहेंगे ये अगला गीत, और ये जो गाना है फिल्म जबक से लिया हुआ, लता जी की प्यारी सी आवाज़ और साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। चलिए यहाँ विश्वानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विश्वानी जी हमारा साथ दे रही हैं कौरिमास की ओर से।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर जारी है। इस वक्त 1:13 हो चुके हैं और चलिए इसी के साथ जी हाँ, फिल्म तो काफी मजेदार है और ये फिल्म है वल्लाह क्या बात है और एक तो सूरत प्यारी, ये मजेदार गाना जो है मांगा है आंटी जी ने, जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं कौन फुको से, और इस प्यारे से गीत को वे डेडिकेट करना चाहती है सभी सुनने वालों के लिए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा ताई की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: फिल्म है दो रास्ते, मोहम्मद रफी साहब एक बार फिर, और ये गाना चुना गया है माधुरी जी की ओर से, जो इस वक्त हमारा साथ दे रही है।

0: सुहाना सफर
1: भाई, कोई किसी के साथ के सहारे जी रहा है, कोई किसी के प्यार के सहारे जी रहा है, कोई किसी के यादों के सहारे जी रहा है, और यहाँ तो भाई गहरी जुल्फों का अंधेरा और मदमस्त आंखों को देखकर कोई जी रहा है। ओए होए, चलिए मजेदार गीतों का ये सफर है और ये बिल्कुल गाने आप ही का सिलेक्टेड बिल्कुल ये प्लेलिस्ट है। और इसी के साथ यहाँ पर बॉशेरी से हीरामती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सभी मुनवा परिवार के नाम जोड़ती हैं। ये अगला गाना जो है फिल्म जाल से लिया हुआ, और भाई हम भी आपको हमारे प्यार के जाल में हम फांस कर ही छोड़ेंगे। अरे मजाक कर रहे हैं, आपके लिए प्यार भरे गाने जो चला रहे हैं, और ये प्यारा सा गीत एक बार फिर लता जी की आवाज़ में।

0: ना सफर
1: सिखाना। दो बजने के बाद मैं भी चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, 2 बजे तक है हमारा प्रोग्राम। वैसे बिल्कुल 1:30 हो चुके हैं और मज़ेदार गीतों के सफ़र में चलिए। सट्टा बाजार फिल्म का ये गाना श्यामा जी हमारे लिए चुनकर लाई हैं, लता जी और हेमंत कुमार की प्यारी सी आवाज़ में, और ये गाना उनकी प्यारी बहन वैजंती के लिए और साथ ही साथ सभी रघुनंदन परिवार के लिए जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे पुराने सफ़र को। पुराना तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये है सुहाना सफ़र। गाने पुराने हैं पर है तो लाजवाब। मज़ेदार गीतों का ये सफ़र, शायद आपको याद होगा वो ज़माना, गुजरा ज़माना, क्या मज़ेदार ज़माना था। अरे मैं कहाँ इन बातों में फंस रही हूँ, ये गाना ही ऐसा कुछ मज़ेदार सा है कि हमें पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक मौका मिलता है।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: और इस सुहाने सफर में ज्ञान बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके सभी दोस्त हैं सुनील, रानी, बामा और शीतल, जो प्रेम पुजारी गीत फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, और आवाज़ लता जी की। यहाँ पर मानती जी भी हमारे साथ बिल्कुल इस सफर में जुड़ चुकी है। नोएल फॉन्स से भी साथ दे रही है उनकी दो प्यारी बहनें अनंती और आरती, साथ है उनके भाई, उनकी दो प्यारी बहुएं उर्वशी, और बिल्कुल यहाँ पर अनुषा भी साथ जुड़ चुकी हैं, गिरीशा, मितिशा, भव्य, पुष्कल, हितांशु, उनके सभी नाती पोतों के नाम हम जरूर जोड़ना चाहेंगे। ये प्यारा सा गाना रंग जमाते हुए इस गीत को आइए साथ मिलकर सुनते हैं।

0: सफर
1: सुहाना सफर है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। वैसे आप अस्पताल में काम कर रहे हो या फिर स्कूल में काम कर रहे हो या फिर किसी ब्यूरो में काम करते हुए रेडियो को एंजॉय कर रहे हैं या फिर बस में आप ट्रैवल करते हुए ड्राइवर साहब ने डाल दिया है रेडियो मनोरंजन का ये प्रसारण और आप मजेदार गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। सो होप ये सफर आपका सुहाना रहे। एंड विद दिस पुलिस स्टेशन में भी कई सारे अभी पुलिस कर्मचारी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे लाल माटी से इस वक्त रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस प्यारे से गीत की फरमाइश की है। तो चलिए दोस्त फिल्म का ये गाना आपके लिए जरूर चलाएंगे। दोस्त किशोर कुमार साहब की आवाज में रखा हुआ ये गीत जाएगा आपके लिए और आपके सभी कलीग्स के लिए। वैसे इस वक्त आकाश भी हवाई सुन रहे हैं। सो होप यू विल हैव अ ब्यूटीफुल टाइम।

0: RM3 Radio. Radio.
1: फिल्म है आशिक, आवाज लता जी की, और ये गाना है हरीश जी की पसंद पर। बुबासन से वे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: भाई रात को आने में भी बहुत टाइम बाकी है इसीलिए मन लगाकर काम कीजिए मंडे का दिन है बहानेबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी और पूरी एनर्जी के साथ काम तो करना पड़ेगा भी इसमें से तो निकल नहीं सकते तो चलिए काम करना ही है तो मन को अच्छा रखते हुए खुशी खुशी काम करते हुए और गाने भी बहुत ही मस्त मज़ेदार एक नज़र का ये गीत लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत ये गाना हमारी शीला जी ने पसंद किया है जो रहती हैं बुनमेया और उनके सभी माकुना परिवार के लिए खासकर उनके भगीने उनके भतीजे हैं केशव माकुना जो रहते हैं ब्रह्मस्थान और उनके नाम करना चाहेंगी वो ये गीत लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में

0: RM3 Radio.
1: सफर तो दोस्तों इसी के साथ आज के सुहाना सफर की यहाँ पर समाप्ति करने का समय हो चला है। अनीता जी बेलगोल से हमारा साथ दे रही हैं और बिल्कुल अनीता जी हम आपको नहीं भूले हैं। आपकी दो

तीन प्यारी बेटियां मालिनी साथ है कल्याणी और पूनम और भाभी है सीता अनीता कालिंदी बेबी और आपकी दो भाभियां अनीता। बिल्कुल आपका भी नाम अनीता और भाभियों का भी नाम हमने अनीता, क्या इत्तेफाक है। और इसी के साथ प्यार भरा ये परिवार और इसी के साथ ये गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। भाई हमने क्या गलत कर दिया, कदम तो रखना होगा क्योंकि सुहाना सफर रोज चलता है दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। जितने भी लोगों ने, जितने भी दोस्तों ने हमें मैसेज किया, साथ दिया, आप सभी को कहेंगे बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के बाद बिल्कुल संस्कृति हमारी कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करती हैं किरण जान की, आज का ये कार्यक्रम अभी थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। और इसी के साथ इस सुहाने सफर को इसे आखिरी गीत के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का सफर बहुत प्यार से रहा होगा। इसी के साथ मिलते रहेंगे छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

की 58 वर्षीय महिला तब मारी गई जब उनका 4x4 रास्ते से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन चोटों के कारण उनकी जान बच नहीं पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनके लीवर में गंभीर रूप से फटने की चोट थी। दूसरी दुखद घटना दक्षिण में स्थित पोनाचुगल की चट्टानों पर हुई। 29 वर्षीय भारतीय श्रमिक सेल्फी लेने की कोशिश करते समय अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। उन्हें लहरें बहा कर ले गई। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करता था। राष्ट्रीय तटरक्षक बल के गोताखोरों और पुलिस के हेलीकॉप्टर सहित बड़े पैमाने पर बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। खराब मौसम के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। खोज अभियान आज भी जारी है। इस बीच आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुथल देखी गई क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाई। इसकी वजह नया रोस्टर है जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया है कि काम के घंटे बढ़ाए गए हैं जबकि अदायगी कम हुई है। और विदेश में दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में एक आतंकवादी हमले की साजिश करने के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों पर विस्फोटकों से संबंधित अपराधों में शामिल होने का शक है। ये घटना अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डे फेयरफोर्ड एयरबेस के पास हुई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। पेचित पॉइंट पीमा में 84 साल की 84-year-old श्रीमती सनमती बंधु पैदाइश नाम भीमल जो धनपति से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके बेटे शिव बंधु के मकान रॉयल रोड पेचित पॉइंट पीमा से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉइंट पीमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 13 रू असाइलम बर्कली बोबासा में 88 साल की 88-year-old श्रीमती जनाएगी लक्ष्मण पैदाइश नाम कतारी जो राधा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 13 असाइलम गली बौकली बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौलव्यू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM और नंबर 5 एवेन्यू फोरेट सदना काठोबोन में 68 साल की 68-year-old श्री सत्यराम धनुकधारी जो प्रदीप से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विद्या धनुकधारी के मकान नंबर 5 आविनी फोवेद सुदना काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए थियानों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

94.6 98.2। आप सुन रहे हैं 94.6 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।

0: संस्कृति की बातें,
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सबको किरण का नमस्कार। आज हम संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत ये देखेंगे कि किस तरह से योग जो है वो हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो नवयुवतियां हैं जो हमें योग के बारे में बताएंगी और हमें ये भी बताएंगी कि उनका योग के साथ कब से संबंध रहा है, कब से

0: वो लोग योग का अभ्यास करती हैं, और अभी वो सिर्फ इसका अभ्यास ही नहीं करती बल्कि योग सिखाती भी हैं। और आप हैं कुमारी इश्मित कौर और साथ में निवेदिता गरोडिया, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप दोनों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज संस्कृति की बातें प्रोग्राम में आप हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो ये संस्कृति है इसमें योग का एक हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति में इन सभी बातों का प्रावधान है कि आप स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास करें। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों बारी बारी से हमें बताएं कि आप कितने वर्षों से योग के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर हम आपके मुख से योग की भरी भाषा भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले इश्मित जी।
1: जी प्रणाम सभी को, जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी को प्रणाम। मेरा जो योग का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो बचपन में हो गया था। मैं स्कूल में योग करती थी और आसन्स काफ़ी मुझे प्रभावित करते थे उस समय।
0: और आप बात कर रही हैं भारत की?
1: जी मैं भारत जी मेरा जो योग का जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था जब मैं 7 वर्ष की थी, और मैंने स्कूल में इंडिया में दिल्ली के अंदर मैंने योग करना शुरू किया था, और धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ते हुए उसमें रुचि बढ़ती गई। जैसे जैसे मैं उसको प्रैक्टिस कर रही थी तो उसी के रुचि जब बढ़ी तो उसमें और जानने की इच्छा हुई कि आसन तो एक चीज़ है पर इससे ऊपर भी क्या है, इसके डीपर लेवल पे क्या है। तो उसको जानने के लिए तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में किया। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन है वो बैंगलोर में हुई, और वहीं पर जो है मुझे एक पर्सन मिले जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई और उसके बेनिफिट्स मुझे दिखे, कितना कंसंट्रेशन जो है मेरा बढ़ा उससे, मेरे बिहेवियर में काफ़ी एक बैलेंस एक स्टेट आया, तो वहीं से शुरुआत हुई। जी
0: जी। और निवेदिता जी, आप अपने योग का सफ़र, आपकी जो यात्रा रही भारत से शुरू होकर आज मॉरिशस आप कैसे पहुंची, वहां पर आपका योग के साथ पहला संबंध कैसे जुड़ा, ज़रा हमें बताएं।
2: ये बहुत ही अच्छा एक मेरे लिए रिफ्लेक्शन होता है जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ, जब भी मुझे ये सवाल कोई पूछता है। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो हमेशा से योग, सनातन धर्म, हिंदू धर्म या फिर शरीर को कैसे ठीक रखना है वो हमेशा से फॉलो करता है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने सबसे ज़्यादा योग का अपने आप पे प्रैक्टिस किया है। तो आफ्टर स्टडीज़, व्हेन आई फिनिश्ड, मैंने जब अपनी कंप्लीट की स्टडीज़, तो मुझे था कि मुझे कहीं डेस्क पे बैठ के जॉब नहीं करना है और ना ही मुझे ऐसे काम करने हैं जहाँ मुझे किसी को सुनना पड़े। तो मेरे पिताजी और मेरे जो एक भ्राता हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू गो, कि आप अपने फिज़िकल को भी ठीक रखें और दूसरों की फिजिक के हेल्थ को भी ठीक रखें, और वो योग वहाँ से शुरुआत हुई।
0: योग को सिखाने का कार्य आपने शुरू किया?
2: फिर मैंने सीखा और थोड़ा थोड़ा सिखाया, फिर सीखा, फिर थोड़ा थोड़ा सिखाया, और मैं इतनी इंडल्ज हो गई उस प्रैक्टिसेस में कि मैंने पूरी तरह से योग को एक शारीरिक योग मान लिया कि योग एक शारीरिक तरीके से किया जाता है, और इसमें जितना आप एडवांस करेंगे, जितना अपने शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उतना आप अच्छे टीचर हैं। तो मैंने अपने आप को कम से कम 6 साल इसी तरह रखा, और 6 सालों तक मैंने ऐसी ही प्रैक्टिस की, खूब सिखाया, खूब किया। फिर मेरे को धीरे से इंट्रोडक्शन होता है अभ्यास स्कूल ऑफ योग का, जो कि ऐसा स्कूल है जहाँ योग की असली महत्वता बताई जाती है। जब मैं इधर आई अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में, मैंने पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या जो इंट्रोडक्शन हुआ, उस समय मुझे पता चला, रियलाइज़ हुआ कि योग खाली फिज़िकली नहीं लिमिटेड है, और तब मुझे इतनी तकलीफ़ हुई उसे तोड़ के, मतलब मुझे अपने आप को
0: अनलर्न करके नई चीज़ सीखने।
2: एग्जैक्टली। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, इसमें शांत बैठे रहना ही एक बहुत बड़ी कला है। और फिर धीरे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई और फिर उससे मैं जुड़ी। तो आज मैं अभ्यास

0: स्कूल ऑफ योग के साथ जुड़ी हूँ, 5 साल हो गया है और 6 साल से मैं फिजिकल योग पहले किया, तो टोटल मतलब मुझे हो गए 8-9 साल। बट हाँ, अभी भी मैं यही समझती हूँ कि योग की जो पूर्ण भाषा या पूर्ण परिभाषा है वो तभी जब जानी जा सकती है जब आप उसे अनुभव करते हैं, तो अभी भी हम उस रास्ते पे हैं।
1: ज़रूर। और निवेदिता जी, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप बात कर ही रही हैं, तो आप ही हमें बताएं कि जैसा कि आप दोनों ने कहा शुरू शुरू में, योग को आपने आसन समझा, योग को आपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना समझा था, फिर बाद में आपको पता चला कि योग यहीं तक सीमित नहीं है, और योग अगर आप देखेंगी तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे पुरानी जो अभ्यास है उनमें से एक है। तो आप हमें ये बताएं कि जब आपने कहा कि आपने जो पहले से सीखा हुआ था उसे भुलाकर फिर से नई सीख को अपनाने का जब समय आया, तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग है क्या, इसकी परिभाषा है क्या। जैसा कि आपने कहा शरीर को तोड़ना मरोड़ना, बहुत से हमारे ऐसे सुनने वाले हैं जो सुबह शाम टीवी पर स्वामी रामदेव जी को देखते हुए फिर एक्सरसाइज करते हैं और वो सोचते हैं कि वो योग कर रहे हैं। ऐसे में योग की परिभाषा आप पहले दीजिए, फिर हम देखेंगे कि कैसे एक्सरसाइज, आसन और योग को एक साथ लाना चाहिए।
0: एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल सवाल है और मैं शायद इसके केपेबल नहीं हूँ कि योग क्या है वो मैं नहीं शायद बता पाऊँगी, वो अनुभव का ही अगेन विषय है। पर मेरे जो अनुभव में, मैं वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आसन और प्राणायाम दोनों योग का पहला हिस्सा है, हमेशा वो ज़रूरी है, पर यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये अभ्यास स्कूल ऑफ योग बताता है। तो कहाँ है अभ्यास स्कूल ऑफ योग या योग क्या है? तो योग शुरू होता है, सबसे प्राथमिक योग जो है वो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। बट क्या
1: योग का ही मतलब है संगम,
0: संगम यूनियन करना या उनको जोड़ना। बट मैं आपसे एक पूछती हूँ कि आपने कभी आत्मा को देखा या आपने परमात्मा को देखा?
1: नहीं।
0: तो इन सब की बातें हम तभी करें जब कोई अनुभव
1: करते हैं।
0: तो उसका प्राइमरी लेवल अगर हमें समझना हो कि योग सबसे बेसिक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति समझना चाहे तो वो है पहले अपने शरीर को समझना। ये शरीर, ये जो बॉडी हमें दी गई है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इनके अंदर इतने केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दिन में, और कभी क्या क्या क्या किस तरह से वो प्रोड्यूस होते हैं, इतना सारा स्टोरेज है। हम बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो हम स्टोरेज कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो स्टोरेज है, स्मेल, टच, फूड, एवरीथिंग जो भी है उसमें स्टोर हो रहा है। कैसे उसे निकालें, कैसे उन केमिकल्स को बैलेंस रखें, और कैसे इस शरीर को हम इतना वो रखें, ट्रेंड रखें कि ये माइंड के ऊपर कंट्रोल ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम शरीर के ऊपर रिगरसली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये माइंड को टेक ओवर करने लगता है। तो अब क्या है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं क्या करूँगी, चलो रेस्ट कर लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं या कुछ अच्छा पी लेते हैं। तो ये शरीर बोल रहा है बट ये माइंड का काम नहीं है। तो ऐसे ही करके हम डिस्कवर करते हैं कि आप इस शरीर को पहले जाने कि व्हाट इज़ दिस बॉडी। हम जब शरीर जान जाते हैं कि क्या मेरे अंदर फीलिंग है, क्यों उठ रहा है और इसे कैसे डायरेक्ट करना है, किस जगह पे डायरेक्ट करना है इस एनर्जी को जब वो उठ रही है, तब वहाँ से हम योग की पहली जर्नी शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते और भी चीज़ें आती हैं।
1: ज़रूर। और इश्मिता जी, आप अपने अनुभव के आधार पर हम चाहेंगे कि आप योग के बारे में कहें, किस तरह से आपने सोचा था शुरू शुरू में ये सिर्फ आसन है और फिर बाद में आपको पता चला ये आसन से आगे और बढ़कर कुछ और भी हैं, ज़रा हमें अपना अनुभव बताएं।
2: जी बिल्कुल। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं काफ़ी बच्चों को देखती थी कि वो हैंड स्टैंड्स कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, तो जैसे कि निवेदिता जी ने बोला कि हाँ, हम मुझे भी लगता था कि तोड़ना और या फिर एडवांस पोस्चर करना ही योग है। पर वो भी एक मेरे जर्नी का पार्ट रहा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती।
1: ज़रूर।
2: तो यही योग भी सिखाता है कि जैसी भी जर्नी मेरी, वो जर्नी रही है मेरे लिए, तो उस समय पर अब उसको मैं कैसे, क्योंकि वहाँ जब हम आसन करते हैं तो एक आसन का पतंजलि योग सूत्र में एक परिभाषा आती है, स्थिरम सुखम आसनम, मीन्स कि अगर आप स्थिर बैठ रहे हैं, सुखमय आसन है, ये नहीं कि पेन हो

0: रहा है, थोड़ा सा इधर उधर किया और मैं पेन में हूँ, मतलब शरीर ही मेरा अभी ठीक नहीं है। तो योग की बात वही है कि योग की बात तो हम बाद में कर सकते हैं, बट पहले शरीर पर आ जाते हैं कि पहले शरीर को ही ठीक कर लें, क्योंकि अभी इतने डिसीजेज़ के साथ हम लोग घिरे हुए हैं। तो जब लोग कोई पूछता है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मतलब मैं योगा नहीं कर सकती हूँ, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं इसीलिए आपको योगा करना चाहिए। तो कहा जाता है कि योग की जैसे शुरुआत होती है कि हमारा बॉडी और माइंड जो है वो बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी। तो योग जो है वो डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट करता है हमारे अंदर, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि मैं अपने कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कार्य कर रही हूँ, उसमें मेरा कितना फोकस है। तो योग मेरे लिए अभी जिस अनुभव पे मैं हूँ, मेरे लिए यही योग है कि क्या अभी जो मेरे को काम दिया गया है, क्या मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए क्या कंप्लीट फोकस के साथ मैं उस काम को कर सकती हूँ, क्या मैं अपने शरीर को ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि हो सकता है कि आज मुझे क्रेविंग हो रहा है, मैंने चलो चॉकलेट खा भी लिया एक, या फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ कर ली जो नहीं करनी चाहिए, बट क्या मेरे अंदर वो अवेयरनेस है
1: और क्या उससे करने के बाद मन शांत हुआ।
0: जी, तो ये क्वेश्चनिंग करना अपने आप को, सेल्फ ऑब्जर्व करना, यही योग सिखाता है। और धीरे धीरे जब आप इसके अंदर एक्सपीरियंस करते जाते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तभी पर्सन जो है वो बढ़ता है, वो इवॉल्व होता है
1: जी।
0: तो इसमें जजमेंट नहीं आती, इसमें लेबलिंग नहीं होती, इसमें बस अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को बस देखना एक दृष्टा की तरह
1: जी।
0: तो वही मेरे लिए अभी इस समय पर योग है कि क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप को सिर्फ विटनेस कर पाऊँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं इश्मित और निवेदिता, और आप दोनों भारत से हैं, लेकिन भारत में आप लोगों ने योग सीखकर बहुत ही तरुण उम्र से आज मॉरिशस में हैं, और आज मॉरिशस में आप दोनों योग सिखा रही हैं। इस विषय की गहराई में अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, फिलहाल तो आपको योग की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में योग का प्रावधान है और योग से कौन परिचित नहीं है। अगर नहीं है तो आज हमने एक बहुत अच्छा प्रस्तावना प्रस्तुत किया और ये प्रस्तावना, ये परिभाषा स्मित और निवेदिता योग का अभ्यास करने वाली दो नवयुवतियों ने किया है और आप लोग सिर्फ अभ्यास ही नहीं करती बल्कि आज योग सिखाती भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये सुनना चाहूँगी कि किस तरह से योग जो है वो सिर्फ भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस के लिए एक दिन का चयन किया है, साथ में यह इसका लिस्टिंग भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हुआ है जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ टिप्पणी करें।
2: थोड़ा सा मैं अगर देखूं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो भारत से ज़रूर है ये संस्कृति, और इस

0: संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व किसके ऊपर दिया गया? शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, और इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई बाकी की सारी चीज़ें हैं जो हम रिचुअल्स बोलते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि इन सभी चीज़ों को एक रिलीजियस एस्पेक्ट से जोड़ दिया जाता है कि ये इस धर्म का है। पर मुझे लगता है कि कई बार हमें ये भी देखना होता है कि वो क्यों ऐसा जोड़ा गया और वो क्यों लेकर आया गया उस समय पे। अगर ये संस्कृति नहीं होती भारत में, या इस तरह से अगर हम लोग नहीं अपने आप को रखते, तो कितनी सारी चीज़ें होती जो आज हमारी उन्हीं बातों में रह जाती, जैसे हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। और UN ने अगर इसको इतना इम्पोर्टेंस दे के इसके लिए एक पूरा दिवस, जो योग दिवस है, वो बनाने का पूरा 21 जून को तय किया है, तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है कि संस्कृति कहाँ तक पहुँची है, कितने लोगों को इसने बेनिफिट किया है, और किस किस तरह से ये लोगों को अपने अलग तरीके से इसको जोड़ रही है, पूरे विश्व भर को एक साथ जोड़ती है। जहाँ आप देखो 21 जून को आप देखेंगे, पूरा विश्व एक साथ मिलके योग कर रहा है, इस नाम पे नहीं क्योंकि ये हिंदुओं का है या
1: ऋषि मुनियों की प्रथा रही है।
0: एक्जैक्टली, इनको इसीलिए क्योंकि साइंस है, योग एक साइंस है, विज्ञान है, और इस विज्ञान को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इट्स ऑल हमारे
1: यूनिवर्सल है
0: हमारे। एग्जैक्टली, तो वो वहीं से शुरुआत होती है। हमने इसको भले ही इसको रिलीजियस एस्पेक्ट पे डाला या किसी भी तरीके से, बट ये सभी के शरीर के लिए, आप सभी के शरीर को बॉडी मूवमेंट्स मतलब आसन्स की ज़रूरत है, क्रियाओं की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। जब तक सफाई नहीं करेंगे तब तक आप और चीज़ें नहीं डाल पाएंगे।
1: आज डिटॉक्स की बात करते हैं, और वो डिटॉक्स को भी हम खान पान से जोड़ते हैं, जबकि सही डिटॉक्स आप योग के साथ कर सकते हैं।
0: जी, मुझे लगता है इश्मीत भी कुछ बता पाएंगे कि कैसे योग में ऐसा बताया जाता है कि आसन से पहले शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है।
1: इश्मीत जी,
2: जी आई थिंक उससे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान दे सकते हैं या फिर गौर कर सकते हैं कि योग जो है वो सभी के लिए है।
1: जी,
2: योग एक लाइफस्टाइल है। मैं किससे कैसा व्यवहार करती हूँ, मेरी वाणी कैसी है, वो योग सिखाता है कि कितना मैं अपने शब्दों के ऊपर मेरा कितना पकड़ है, कितनी कॉन्शियसली मैं किसी को झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, किसी को हार्म तो नहीं कर रही हूँ, मेरी वाणी से ही मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, मैं कितना कम बोल रही हूँ और कितना प्रिसाइज बोल रही हूँ, ये भी योग सिखाता है। हम कितने भी स्तर पर पहुँच जाएँ, कितने भी एक अचीवमेंट अगर हो जाए, पर अगर हमारा कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, अगर मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है कि जो सबको लेके चले, तो योग जो है अगेन वो
1: डिफीट्स द पर्पस।
2: या मतलब आपको जो हमारा एक लूप बन गया, एक सर्कल बन गया है, जहाँ पे हम लोग बस सोचते हैं कि हमारा उठना बैठना सोना खाना, हमारी ज़िंदगी बस इतनी सी रह गई है। पर योग जो है उससे आगे बढ़ के बताता है कि आप अगर आज CEO हैं किसी कंपनी के, तो आप एक हैं, आपको वो आपने एक बहुत मेहनत करी है उस जगह तक पहुंचने की, पर उसके अलावा जब हम उस लेबल को हटा लेते हैं तो आप एक इंसान कैसे हैं। अगर कोई माता पिता हैं तो आप कैसे माता पिता हैं, तो वो योग सिखाता है कॉन्शियस होना, अवेयर होना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आज जैसे हम मॉरिशस में हैं, हम लोग इतने डाइवर्स कल्चर के साथ में रहते हैं, तो योग यहाँ पे कैसे होगा कि मैं सबके साथ कैसे चल सकती हूँ, मैं जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, मैं अपने से अलग मानसिकता के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करती हूँ। तो योग जो है आपको इस जगह पे इस्टेब्लिश करता है कि आप एक्चुअली इनवाइट करते हैं कि मेरे से दूसरा पर्सपेक्टिव मेरे साथ में आए और मुझे बताए कि हाँ तुम्हारा, ताकि मेरा इवोल्यूशन हो, मेरा एक्सपेंशन हो वहाँ पे पर्सपेक्टिव का, तो वो योग बताता है।
1: और योग का जब अभ्यास करते हैं
2: जी,
1: तो इसमें कई चरण हैं, मतलब कि अभी आपने शरीर की सफाई की बात की, आपने ध्यान को केंद्रित करने की बात की, विचारों पर नियंत्रण, और अभी वाणी की बात कर रहे हैं, और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ पर बीमारी एक समस्या है और दूसरी समस्या है क्रोध, गुस्सा, जिसका शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है योग के माध्यम से इन

0: से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसका समाधान है योग में?
1: देखिए कि जैसे अगर हम इमोशंस की जैसे बात कर रहे हैं, क्रोध की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको एक थोड़ा सा समझेंगे कि क्रोध क्यों आता है
0: जी,
1: जब मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो मुझे क्रोध आएगा। तो मतलब मेरा एक रिजिडिटी है, मुझे मैंने एक अपना एक बना लिया है, एक कम्फर्ट, एक लाइन बना ली है कि मुझे चीज़ें ऐसे ही चाहिए। पर जो लाइफ है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो आपको इस रिजिडिटी से तोड़ के आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि हम एज अ ह्यूमन, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, हम सभी एक्सपैंड होने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं कि हमें और एक्सपैंड होना है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे और पैसे चाहिए, अगर मेरा करियर है तो मुझे और अच्छा करियर चाहिए। तो मैं हमेशा एक एक्सपेंसिव अवेयरनेस की ओर मैं बढ़ती जा रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं और बढ़ती जाऊँ उसमें। तो बट उसके अंदर हम कितने ग्राउंडेड हैं। और जब क्रोध की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इमोशंस, अभी जैसे हम लोग शरीर की बात कर रहे थे, तो ये सभी इमोशंस जो हैं हमारे शरीर के अंदर ही हैं। हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर एक सेल में मेमोरी है। आज मैं कैसे व्यवहार कर रही हूँ मेरी बॉडी को ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसने वैसे ही किया है बचपन से। जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा अपने माँ बाप से, अपनी सोसाइटी से, अपने टीचर से, एक बच्चे की तरह मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया स्पॉन्ज की तरह। अब मैं जो भी जैसा व्यवहार कर रही हूँ, अगर मेरा वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है
0: तो आदत के हिसाब से करती
1: जाऊँगी। मतलब शरीर चलता रहेगा
0: जी,
1: बट वहाँ पे मेरा अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे जीवन में और एक जानवर के जीवन में क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पर? वो भी खाना पीना सोना सब कुछ कर रहा है, मैं भी वही कर रही हूँ। तो पैटर्न हमारा अगर वैसा रहा, अगर उसमें अवेयरनेस नहीं हुआ, तो मैं चलती जाऊंगी। मेरे को कोई जैसा भी बोले, कोई वाणी उनके, अगर किसी और पर्सन के वाणी में शुद्धता नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि मुझे भी वैसा ही करना है? मुझे भी तो वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? वो योग से आएगी। तो जब ये अवेयरनेस आ जाती है, तो सिर्फ क्रोध नहीं, जेलसी होता है, जैसे एनविनेस है कि ईर्ष्या हो रही है किसी से,
0: स्ट्रेस है,
1: बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है शरीर के अंदर, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ,
0: तो उन सभी को
1: डर तो सबसे बड़ा है एक्चुअली। हाँ, मुझे लगता है कि
0: हर बात पर एक डर सा दिल में बैठ जाता है।
1: जी बिल्कुल, हम लोग एक्ट करते हैं आउट ऑफ फियर कि अच्छा मैंने ये नहीं किया तो हो सकता है वो मुझे, मतलब मैंने आज ये काम नहीं किया तो मैं कल
0: समस्या
1: हो जाएगी, मैं अगर ऐसी नहीं रहूँगी तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं हर समय एक फियर के साथ में चल रही हूँ, और उसकी वजह से वो फियर ही है जो मुझे इवन बाहर भी नहीं निकलने दे रहा अपने लिमिट जोन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मुझे अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, मुझे जो मेरा कंफर्ट, एक मेरा पैटर्न बना है, उसको तोड़ के कुछ अलग करना होगा जो कि मुझे नहीं पता। पर मेरी जो जर्नी है, जो मेरा एवोल्यूशन है, जो मेरा रहेगा, वो एक्चुअली उस कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही होगा
0: जी।
1: वो मुझे वो टैप ऑन करना पड़ेगा, बट क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है, तो इसलिए मैं टैप नहीं करना चाहती
0: जी।
1: बट जिस समय मैंने वो फेथ के साथ में उस जगह को टैप ऑन कर दिया, और मुझे मैंने अलाउ कर दिया, अपने आप को रिसेप्टिव बना दिया कि जो भी डिवाइन प्रोसेस है, मैंने अपने आप को उसमें बस छोड़ दिया कि ठीक है आप संभालिए
0: जी।
1: चाहे वो किसी में भी हो, वो हर एक पर्सन के लिए कोई अलग पर्सन हो सकता है, कोई अलग एनर्जी हो सकती है। तो योग सभी के लिए, अपने स्तर पे सभी के लिए है। तो कैसे हम लोग उसको अपनाएं, कैसे हम लोग इंक्लूसिव हो जाएं, अपने आप को ही समझ लें, दूसरों को नहीं समझना है, अपने आप को समझ लो पहले,
0: तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो
1: समाधान हो जाएगा। और हम लोग जान लेंगे कि कोई भी अगर शरीर में कोई डिसीज आ रही है, वो क्यों आ रही है, तो वो भी समझ आ जाएगी
0: जी।
1: तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि शरीर और मानसिक जो है वो साथ में है, तो कोई भी शरीर में कोई परेशानी हो रही है, डायबिटीज़ हो रहा है, वो मेंटल में भी आएगा। लेट्स से कि मेरी बॉडी में पेन है, बैक पेन है, तो अब वो रिफ्लेक्ट होगा मेरी वाणी से, मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर दूंगी, मैंने कुछ खाना खाया गुस्सा में खाया या जल्दबाजी में किया, मेरे बिहेवियर में दिख जाएगा कि मैं हर बार जल्दबाजी कर रही हूँ। और यही अगर मैं अपने मेंटल की बात करूँ, अगर तनाव ज़्यादा है तो मुझे माइग्रेन हो जाएगा, शारीरिक में आ जाएगा,
0: एसिडिटी हो जाएगी,
1: पेट खराब हो जाएगा, तो आपका
0: ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है,
1: यस, डायबिटीज़,

0: ब्लड प्रेशर, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ खाया या कुछ ऐसा किया, मतलब एक दिन हम लोग उठे और हमें शरीर में बीमारी आ गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आपकी बॉडी ने स्टोर करे हैं अपने अंदर, सेल्स के अंदर, अब वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं बाहर,
1: और योग के माध्यम से जिसको बाहर निकाला भी जा सकता है।
0: जी बिल्कुल
1: जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं योग पर, किस तरह से अभी हमने देखा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई ये जो योग हैं वो न सिर्फ भारतीय सभ्यता का होकर आज एक यूनिवर्सल आयाम ले चुकी हैं, एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे कि न सिर्फ भारतीय सभ्यता से जुड़े लोगों को लाभ होता है बल्कि हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति को हो सकता है। इस विषय को हम थोड़ी देर में आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ हैं अश्मित जी और साथ में निवेदिता जी, और इनसे हम थोड़ी ही देर में फिर से बातचीत जारी रखेंगे।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं योग पर और हमारे साथ हैं इश्मित और निवेदिता जो कि हमें योग अभ्यास के बारे में बता रही हैं। तो ये दो नवयुवतियां जो हैं इश्मित और निवेदिता ये एक संस्था के साथ मॉरिशस में जुड़ी हुई हैं जहाँ योग अभ्यास सिखाते हैं। तो इश्मिता जी और निवेदिता जी आप हमें इस स्कूल ऑफ योग के बारे में हमें बताएं जो कि लालोरा में स्थित है मॉरिशस में।
2: जी तो अभ्यास स्कूल ऑफ योगा जो है वो शुरुआत हुई थी उसकी 2019 में इंडिया के अंदर भारत में। वहाँ से हम लोग पहले मुंबई में थे, वहाँ पे हमारा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है और अभी हम लोग 2021 के अंदर मॉरिशस आए थे। तो यहाँ पर 2021 में अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था जो कि अभी एक सैंपियर लालोहा में है और एक दूसरा हमारा सेंटर अभी रिसेंटली हमने ओपन किया है लास्ट ईयर जो है कातर बोन्स में। हम लोग अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं योग की कि सिर्फ एक ये एक पर्सन तक या एक सेगमेंट तक ही स्थित नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, एक ह्यूमन जो भी ह्यूमन है उसके लिए है बेसिकली। तो ये यूनिवर्सल है जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जो योग अभ्यास है वो यूनिवर्सल है। किसी को अपने शरीर का मन का अगर ध्यान रखना है तो उसको योग करना चाहिए। तो इसी की जो हम लोग प्रमोशन जो है इसका हम लोग योग का डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कर रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि योग सिर्फ सीमित अगेन फ्लेक्सिबल पर्सन के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रिजन में जाते हैं, इनमेट्स को हम लोग सेशन प्रोवाइड करते हैं, ड्रग रिहैब्स के अंदर हम लोग सेशन डिलीवर करते हैं, हम लोग चिल्ड्रन के साथ में, टीचर्स के साथ में और कम्युनिटी के साथ में भी हम लोग योग का करते प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली यहाँ पर भी आयुर्वेद को भी प्रमोट करना शुरू किया है क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों सिस्टर साइंसेस हैं, दोनों साथ में चलती हैं
1: जी।
2: योग जो है आपको शरीर से, आपको मन से, आपको कैसे स्थिर रहना है वो बताता है और आपका पर्पस क्या है लाइफ का वहाँ तक आपको लेके चलता है। पर और आयुर्वेद जो है उसको सपोर्ट करता है आपके जितने भी आयुर्वेद में उसका जो वर्ड ही है आयुर प्लस वेद, सो आयुर मींस लाइफ एंड वेद मींस साइंस, साइंस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे अपनी जीवन शैली होनी चाहिए आयुर्वेद जो है वो बताता है। तो उसी के लिए हम लोग अभी हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोग आयुर्वेद का कैंपेन भी कर रहे हैं थ्रू आउट मॉरिशस और जल्दी ही हमारा जो क्लिनिक है वो भी एक्चुअली वो अभी इस्टेब्लिश हो चुका है। सो लोग आ सकते हैं आयुर्वेद के बारे में, उनको अपना अगर जानना है अपनी

0: प्रकृति जाननी है, दोष जानने हैं या कोई भी समस्या है उसके लिए, वो आयुर्वेद के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं
1: जी। और निवेदिता जी, आप हमें ज़रा ये बताइए कि मॉरिशस में जो योगा स्कूल चल रहा है, इसमें किस वर्ग के लोग आते हैं, किस आयु के लोग आते हैं, प्रक्रिया प्रतिक्रिया कैसी है, रिएक्शन कैसा है यहाँ के लोगों का योग के प्रति?
2: जब हम भारत में जब हमने शुरुआत की अभ्यास स्कूल ऑफ योगा की, तो उसको हमने इस तरह से शुरुआत किया, और ये इसीलिए आया जो हमारे फाउंडर है अभ्यास के, अभ्यास स्कूल ऑफ योगा के, उनका नाम है संत नामदेव जी। सो एक रीज़न था इसका कि योग के लिए सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम ध्यान जब करते हैं, ध्यान की एक पद्धति करना या ध्यान करना ही योग है, सब लोग बैठते हैं। आज के समय हर एक यंग युवक और अडल्ट या कोई भी वृद्ध है, उनको ध्यान करना है, ऐसा सबको पता है। और जब हम शुरुआत करते हैं ध्यान करने की, तब हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं। ना हम 5 मिनट सीधे बैठ सकते हैं और ना ही हमारा मन एक जगह पे लगता है, कहीं और देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कमर में दर्द है। तो इसीलिए अभ्यास स्कूल ऑफ योग पहले, सबसे पहले आता है शरीर के ऊपर कार्य करते हैं हम लोग, कि वहाँ पे शुरुआत होती है कि हम पहले अपने इस शरीर को साध ले, इस बॉडी को पूरी तरह से काव कर ले, कि एटलीस्ट जैसे स्मित ने पहले भी बताया कि हम लोग पहले उसको एक केपेबल बना ले, कितनी सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, कितना सारा मन में अभी भी कितना सारा चीज़ें हैं जो स्टोर्ड है, मेमोरीज़ के अंदर है, हमारे सेलुलर मेमोरीज़ बोलते हैं उन्हें, उसको कैसे हम चित्त की वृत्तियों को शांत करें। तो पहला ही जो सेकंड हमारा सूत्र है पतंजलि योग सूत्र की जब बात हुई, तो उसका दूसरा जो सूत्र है वो यही है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का मतलब या योग का कार्य यही है कि वो चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है, मतलब शांत करता है या रोकता है। तो अब वो कैसे, तो वो प्राण के माध्यम से होता है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक टूल है जो यूनिवर्सल है, सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, पूरे जगत में सबके पास है, और बहुत क्रूशल है, उसे कहते हैं प्राण। और जब वो आता है इस पे, तो हमें ना आसन्स की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बट उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हमारी शरीर में जितनी भी चित्त की वृत्तियाँ हैं या चंचलताएँ हैं, मेरे को कोई व्यक्ति दिखा उससे मैं चंचल हो गई, मुझे कोई चीज़ दिखी या सिचुएशन दिखा मैं उससे चंचल हो गई, या मेरा मन अशांत हो गया, तो उन सारी चीज़ों का कार्य क्या है, अंदर ही है बॉडी के, उसको कैसे शांत करें। तो सबसे अच्छा टूल अभी जो बताया गया है वो है प्राण के माध्यम से। तो ये अभ्यास में, चाहे वो भारत में है, चाहे वो मॉरिशस में है, या ग्लोबल में कहीं पे भी, पूरे विश्व में कहीं पे भी है, वो अभ्यास ऑपरेट करता है उस चीज़ पे जहाँ पे हम सभी रिलेट कर सकते हैं, वो है प्राण पे। आप जब प्राण की शक्ति जान जाते हैं तो हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। तो प्राण इतना कैपेबल है कि हम उसको कभी भी रोक सकते हैं, किस तरह से भी ले सकते हैं और कैसे भी। बट आज के समय उल्टा है, कुछ भी गुस्सा आया, जैसे आपने गुस्से की बात की, तो तुरंत गुस्सा आता है क्योंकि हाँ मन में कुछ विचार आए, फटाफट जैसे ही मन में इतनी गति से विचार आएंगे उतनी गति से हम लोग हाँ व्यक्त भी कर देते हैं, वर्बलाइज भी कर देंगे, और उसी गति से हमारे श्वास भी अप एंड डाउन होगी
1: जी।
2: हमें गुस्सा आ रहा है, हम रो रहे हैं, या हम हंस भी रहे हैं, हम बहुत जॉयफुल हैं, हमारी श्वास उसी मन के गति के ऊपर रुकी है। अब हमें योग में यही चीज़ समझनी है कि कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं, कि इंस्टेड हम अपने मन की गति से अपने प्राण की गति को तय करें, क्या हम उसे रिवर्स करके प्राण की गति को कंट्रोल करके मन की गति को भी हम लोग नियमित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि जितना आप प्राणों पे रहेंगे उतना आप अपने स्वयं पे रह रहे हैं, आपका कंट्रोल आप पे है, प्रेजेंट में है, इस समय आप इस परिस्थिति में उपलब्ध है। नहीं तो कभी पास्ट में जाने का मन करता है, कुछ सोचे, कभी फ्यूचर में कुछ प्लानिंग चल रही होती है। इसीलिए हम लोग बार बार उसको कहते हैं कि जितना आप प्राणों पे ध्यान देंगे उतना आपके पास वापस आने की होगी। और उसी हिसाब से आपका जो सवाल था, तो यहाँ पे और कहीं पे भी अभ्यास में हर एक वर्ग के लोग आते हैं
1: जी,
2: चाहे वो यंग 5 ईयर ओल्ड किड है, 5 साल का बच्चा है, या फिर किसी भी 80 ईयर ओल्ड

0: विमेन एंड मैन, ओल्ड मैन और विमेन का है, किसी के लिए भी सीमा नहीं है। और अभी भी ऐसा ही है कि अभ्यास स्कूल ऑफ योग एजुकेटर्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के बच्चों के लिए, कॉरपोरेट के लीडर्स के साथ साथ टीम मेंबर्स के लिए, एज वेल एज उन्हीं सारे जो इनमेट्स हैं या फिर कह सकते हैं जो जेल में आज कैदी हैं उनके लिए, या जिन्होंने ड्रग्स लेके अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अपने आप को परेशान किया, उनके लिए भी है। तो अभ्यास हर एक व्यक्ति के लिए और अभ्यास हर एक जगह अप्रोचेबल है, आप कभी भी उससे जुड़ सकते हैं। योग का कोई भी लेवल नहीं होता और अभी सभी इसी में, सब कोई जुड़ा हुआ है, हर एक कम्युनिटी मेंबर, चाइनीज़, मुस्लिम्स, इवन क्रिश्चियंस, हिंदू, मॉरिशंस, नॉन मॉरिशंस, बाहर से फ्रेंड्स, इंग्लैंड, सब जगह से जुड़े हुए व्यक्ति है, क्योंकि ये योग बताता है कि आपके शरीर का क्या कार्य है
1: जी। और अभी हमारे पास सिर्फ हम कह सकते हैं 7 मिनट बाकी हैं प्रोग्राम को समाप्त करने में, और हम चाहेंगे कि आप ज़रा अनुशासन के बारे में बताएं, क्योंकि आप कह रही थी, दोनों कह रही थी शुरू से कि अनुशासन ही इसका आधार है। अगर एक डिसिप्लिन होगा तो आप योग को ठीक से सीख सकते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि अनुशासन की बात जब आप कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना होगा।
2: जी, अनुशासन मेरी लाइफ में तो यही है कि कितना मैं ब्रेथ के साथ में हूँ, मैं कितना अपने प्रैक्टिसेस के साथ में, मेरा क्या व्यवहार है। तो डिसिप्लिन के बहुत सारे स्तर हैं, निवेदिता जी इसमें और गौर फरमा सकती हैं, पर इसके अंदर बस आप अपने लिए समय निकालिए
1: जी,
2: बस यही है कि अगर आपके पास समय, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है, हमें भागना होता है, काम करना होता है।
1: असल में तो समय होता है, लेकिन हमारे पास वो अनुशासन नहीं है कि हम ठीक से कोई प्लानिंग कर पाए और हर एक कार्य के लिए एक समय सारणी तय करें।
2: जी बिल्कुल, उसी पे एक्चुअली निवेदिता जी अगर बता पाएंगी इसके अंदर, देन आई कैन कम इन।
1: ठीक है,
0: डिसिप्लिन कभी भी समय से नहीं जुड़ा है
1: जी,
0: कि हम इस समय ये करेंगे, सुबह 6 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाना और यही प्रैक्टिस इस समय करना और इस समय खाना खाना। जब हम इन सब चीज़ों को रखते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को रिजिड बना लेते हैं
1: जी,
0: तो ये और हमें प्रॉब्लम देता है कि करना ही है, हाँ। इस समय करना ही है, पर डिसिप्लिन क्या है,
1: एक स्ट्रेस आ जाता है उसके साथ।
0: एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छे व्यक्ति ने लिखी है, रोम के एक काफ़ी अच्छे फिलोसोफर ने लिखी है, उन व्यक्ति ने कहा है कि आपको अगर अपने मन का सबसे अच्छा उपयोग करना है तो शरीर को डिसिप्लिन करना सीखिए, और शरीर को डिसिप्लिन करना इज़ नॉट टाइमली बाउंड करना, बट जो भी कार्य है, यू आर डूइंग ब्रशिंग, आप सांस दांत साफ कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप अपने लिए समय बैठ रहे हैं, आपको रोज़ करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है, अनुशासन का मतलब है उस एक चीज़ को कंसिस्टेंसीली, कॉन्स्टेंटली हमें रोज़ प्रैक्टिस करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो संत श्री नामदेव जी कहते हैं, इफ़ यू कैन, आप अगर पूरे दिन में 15 to 20 मिनट्स अपने लिए समय निकाल के अपने साथ बैठ सके, विदाउट फ़ोन, कोई भी फ़ोन ना हो, कोई भी डायरी बुक, कुछ नहीं, कोई थॉट्स भी नहीं, अपने साथ बैठिए और विचार आएंगे, उसको देखिए, करिए, समझिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप उसमें बैठ सके रोज़, कभी भी पूरे दिन में कोई समय नहीं अगेन, तो वो एक अनुशासन को आपको भांपता है कि हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरी एनर्जी अब तक कहाँ कहाँ खर्च हुई पूरे दिन में, मैंने कितना अपने आप को परेशान किया और कितना इस बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। 20 मिनट या 15 मिनट भी रोज़, आधा आधा भी कर सकते, कि सुबह 10 मिनट बैठ गए, शाम को 10 मिनट बैठ गए, तो भी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आप धीरे धीरे धीरे इंटरनलाइज़ करने लगते हैं, और वहीं से अनुशासन शुरू होता है कि आप इन डिसिप्लिन कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको बांधना है अपने आप को, डिसिप्लिन आपको फ्रीडम लाता है
1: जी।
0: जो फ्री विल आप कहते हैं कि फ्री विल हमें सबके पास है, उस फ्री विल से हम चॉकलेट खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, एक्चुअली वो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है उसके ऊपर। तो जो लीडर्स होते हैं वो फ्रीडम कैसे लाते हैं, डिसिप्लिन से, अनुशासन से, कि उनकी फ्री विल उनके कंट्रोल में होती है, कहाँ एनर्जी डालनी है, किस समय डालनी है और कैसे डालनी है, वो अनुशासन उसे कहते हैं।

0: हैं आज के अगर समय एवरी यूथ, कोई भी अगर युवा है अगर उसे सीख लेता है, ही और शी इज द लीडर।
1: और निवेदिता जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? अगर इससे ज़्यादा आगे हम जाना चाहेंगे खान पान को लेकर, फिर किस वक्त खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सोच को किस तरह से नियंत्रित करें ताकि हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ें, ज़रा इसके बारे में हमें कहें।
2: जी, जैसे हम लोग प्राण के बारे में समझ रहे थे, तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो क्या खाना खा रहे हैं, क्या वो मेरी प्राण की शक्ति को बढ़ाएगा? जब मैं प्राण बोल रही हूँ, दैट इज़ ब्रीदिंग, दैट इज़ ब्रेथ, उसका सटल फॉर्म हम बोल सकते हैं प्राण है। तो जिस फूड के अंदर, जिस खाने में प्राण की शक्ति ज़्यादा है, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, जैसे कि फल हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियाँ हो गई, फ्रेश फूड जितना होगा और जितना फ्रेशली बनाया जाएगा, उसमें प्राण की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग वो खाएंगे तो हमारे शरीर का जो ब्रेथ है, जो हमारा प्राण है, वो वहाँ पे हेल्प करेगा हमें रेगुलेट करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन, तो क्या अनुशासन यहीं आ जाता है कि क्या मैं अपने जो भी मैं खा रही हूँ, क्या मैं कॉन्शियसली खा सकती हूँ उसको? क्योंकि सभी को पता है, हम लोग स्कूल गए थे एक बार और वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों से पूछा कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड क्या होता है, आप ड्रॉ करके बताइए।
1: उनको पता है,
2: सभी बच्चों को पता है कि फ्राइज जो है वो अनहेल्दी है। उन्होंने हेल्दी में क्या किया, बुइयों डाला, कैरेट्स डाले, कॉलीफ्लावर डाला। सभी को पता है, हम सभी को पता है कि क्या अच्छा है मेरे शरीर के लिए, क्या नहीं है। पर अभी हमारा जो ग्रिप है, हमारे जो सेंसेस हैं, उसने हमें ग्रिप कर लिया है। मेरे टंग में को अच्छा लग रहा है, मेरे को टेस्ट चाहिए, तो मैं जाके बाहर का खाना खा रही हूँ। मुझे कुछ देखना अच्छा लगता है तो मैं अभी उसमें हूँ। तो मैं अभी अपने सेंसेस, अपने ज्ञान इंद्रियों से ही अपने उससे ग्रसित हूँ, अपने शरीर से ही ग्रसित हूँ।
1: उससे उठना है,
2: उससे उठना है, अवेयर होना है
1: ज़रूर।
2: तो जो भी खाएं आप, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, आप अपना एक समय बांध दीजिए और ये कोशिश करिए कि आप फ्रेश फूड खाएं, अपने बच्चे को भी दें और खुद भी फ्रेश खाएं, 4 घंटे पुराना नहीं। आप अच्छा फूड भी है, 4 घंटे पुराना खाएंगे वो भी तामसिक बन जाएगा।
1: अच्छा।
2: खाना है अच्छे से उसी समय पे बना के खाइए
1: ज़रूर।
0: मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी।
1: हाँ? मैंने बहुत, हमारे पास कुछ सेकंड रह गया है,
0: मैंने बहुत नोटिस किया है कि भारत से अलग है कल्चर, ब्रेड का कल्चर है।
1: जी हाँ।
0: उससे हमारा शरीर और अलग तरीके से प्रोसेस करता है। तो मैं प्रमोट करूँगी कि हम सात्विक कुकिंग करते हैं वर्कशॉप, आप उसमें जुड़िए और रोटी खाना सीखे, रोटी बना के रोटी खाना
1: ज़रूर। तो इसी इसी बात पर हम आज के प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो बातचीत शुरू हुई है, जो अभी सच में पूरी गहराई तक गई भी नहीं है, इसको हम अन्य प्रोग्राम में जारी रखेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार। नमस्कार।

उभरती हैं। उधर तमागे में दक्षिण अफ्रीका मूल की 58 वर्षीय महिला तब मारी गई जब उसका 4x4 रा

0: से पता चला है कि उसके लीवर में गंभीर चोट लगी थी। एक और हादसा देश के दक्षिण में स्थित पोना चुगल की चट्टानों पर 29 वर्षीय भारतीय श्रमिक सेल्फी लेने की कोशिश करते समय अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। लहरें उसे बहा कर ले गई। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में कार्यरत था। नेशनल कोस्ट गार्ड के गोताखोरों और पुलिस के एक हेलीकॉप्टर सहित बड़े पैमाने पर बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। खराब मौसम के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। खोज अभियान आज सुबह फिर से शुरू किया गया। 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटाल्या में लगने वाले कॉप 31 सम्मेलन में हिंद महासागर के द्वीप जलवायु से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज सोमवार को कोडाउट सेंटर में एक क्षेत्रीय संवाद शुरू किया गया। सरकारों, नागरिक समाज और युवाओं के लगभग 60 प्रतिनिधि 2 दिनों तक विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं ताकि साझा प्राथमिकताएं तय की जा सके। आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुथल देखी गई क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाई। इसकी वजह नया रोस्टर है, जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया कि काम के घंटे बढ़ाए गए हैं जबकि अदायगी कम हुई है। और विदेशी स्तर पर फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करते वक्त एक हादसा पेश आया। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गई, जिससे 3 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। Henri Caton, au coulé mais 51 साल के 51-year-old श्री शास्त्री गंगाना जो बुडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगाना के मकान Henri Caton au coulé से उठाकर दाह संस्कार के लिए पैनमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा आज के चर्चा कार्यक्रम में। तो हमने के कार्यक्रम आज तनी सुन खास बाटे काहे कि हमने के दुगो मेहमान रहियन स्टूडियो में हमने के नंदकिशोर प्रताप जी और भाई संजय शंभू। तो चल तनी देर में हमने संगे रह बजा कोनो प्रश्न रही पूछे के खेती बाड़ी से जुड़ल। तो लाइन खुलल बाटे 402-4000-4500। एक और छोटा सा मिस कर ब्रेक लेके हमने वापस आ जा और वो जब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के बारे में हमने बात करी ला जा काल कैसे रहल आज कैसे बातें कल ओकर भविष्य कैसे और उज्जवल हो सकी और टीवी रेडियो के माध्यम से इस सब हर हमने चर्चा करब जा साथ दिया जा।

फिर उसे सब कोई के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटे। जैसे कि जन पे करेला हर लंदिन के हमनी भेटायला सर हाईजन स्टूडुआ बाटे हमने के मेहमान आवेलन फागिद अने से हमने खेती बाड़ी के बारे में बात करी ला जा। आज हो हमने बत्याप सर तन जो विशेष बातें जैसे कि तोहरा बोली हमने इतना चीज बत्याए ला जा खेती बाड़ी के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में आगे कैसे रहा तन सुन हमने के आय जा बाटे और जस्ती देताए में हमने जानब जा। आज जो बातें हमने कैसे अपन खेती बाड़ी के हमने के जितना खेती हर लोग काम करे लंजा और जो फ्यूचर जो भविष्य बातें ओकरा और उज्जवल बनाए खातिर

0: कहा कि जे खाए के नहीं मिली हमने न सकब सजिए हमने फूड सिक्योरिटी पर बात करी ला जाना। तो फूड सिक्योरिटी जो बातें रेडियो और टीवी के माध्यम से हमने के जो टीवी रेडियो बातें ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन बड़का बातें कैसे कैसे बातें इकर पर जस्ती जानकारी और बतियाए खातिर हमने के दो मेहमान हवन जैसे कि तोहरा बोले फागिद अने से प्रिंसिपल एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान नंद किशोर प्रताप और सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी। तो दोनों मेहमान के प्रणाम नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: तो अच्छा लगल तोहरा देख के फिरो से प्रताप जी इतना दिन पर आयला और अच्छा लगल। तो कई जना पूछेलन प्रताप जी कहाँ हवन आज देखा चल आयला। तो हमने बात करे था जा कि जो बदलाव बाटे जो हमने के एग्रीकल्चर रहल आगे और जो नहबी हमने करत है सर जो आगे होय होला बात एक पर जस्ती हमने बताब जब तो जब हमने बात करे थे जब फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा बाटे हमने ला जानी ला जा कि जो टीवी और रेडियो जब से हमने शुरू कर ली जा आज की चर्चा लगभग सकेला 13 बरिस हो गल बाते आज की चर्चा हमने करत है 2016 में। तो देखा कितना बरिस हो गल बाते तेवे जिन बातें और राज्यों ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे हम बोली वो बड़ा बाते तनि सुन एक बारे में हमने के बताइए और एक पीछे जो हमने देखा था जा जो खेती बाड़ी बाते कौन कौन बदलाव आगे रहल कौन कौन बदलाव आनल गल।
1: हाँ नीतू शाह जी इत बोल रहा है देखा बदलाव
0: हाँ।
1: अभी ये देखा ऊंचा स्थान पर बैठा आगे हमारे शुरुआत हो रहा ये देखा हौजल विभाग क्यपिप में जहाँ सीजो रहा पहला कार्यक्रम गरी करे आज नहीं 25 साल हो गल आवे बगल से करे लिंजा लाइव प्रोग्राम करे लिंजा करे है तो हौजा प्रोग्राम शुरू हो रहा। तो हम तो पहला ये देखा दफा ऐसे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है पर जैनी लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा बुझा क्योंकि ये देखा लाइव प्रोग्राम में और कोई हमने के प्रश्न पूछे लंजा लाइव तो ई बहुत अच्छा हे देखा हमने बताए ला जा हम ही सोची ला जा 1-to-1 है पर कितना जना हमने के सुना तो वन जा और कुछ रहेला प्रश्न कुछ ऐसी करके मिल जाला हमने के और एगो प्रश्न से हे देखा कितना जना लाइव लोग के उत्तर मिल जाला और कोई नहीं सके लंजा फोन करे तो अब तक फोन करे लंजा पर एगो चीज हम थी जब बोलत हुआ हम बोला जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना कबो सोचले रही जा ऐसे रहती जा ऐसन माहौल में ऐसन चीजों अभी ये देखा कैसन बदलाव बोला हमने सब कोई लाइव सकत हुआ जा देखे हमने के फेसबुक पर अपन मोबाइल पर हवा खेत में हवा कहीं बगल हवा अभी देखा तो MBC लाइव बा MBC फेसबुक पर चल जाए कोई अभी सका था तो ये देखा नहीं जानने जा इस सफर कहाँ से हमने के आनी और आर सफर है देखा हमने कैसे बोल रहा शुरुआत कर लेने जा 2016 में 2016 आज की चर्चा प्रोग्राम रहा एगो प्रोग्राम उस शुक्रवार के रहा अभी तक हमारे थी याद बा बनाना फैकल जो बीमारी रहल केला पर हमने के देखा हम अली पर बोलन जा आमंत्रित कर दा एगो किसान के हमने के जो भाई कृष्ण फाउदा हवन उ चला रहन तब से हमने ये देखा है ये मंच पर नहीं है जा अब तक खेत में हमने भेंट भेंट होला हे देखा कहाँ से निकल के हुए प्रोग्राम से उही दिन तय होल हे देखा भाई प्रताप सिर्फ बतियाला कहे नहीं छा नाम बतलाई की वही दिन है जब आ रही शुक्रवार के जा रिसेप्शन MBC के एथी हम के एथी कलन बहन नर्मदा कितना
0: जी
1: बोलना नहीं देखा सिर्फ बोल देवा था ऐसे बकबक कर देवा तो बकबक करेला पर चाहे ना बतलाई की वही दिन तब शुरुआत होल है ये प्रोग्राम माती के मोल भाई संजय हवन ये भी प्रोग्राम में अलन देखलन कैसे हमने हमने अपन दफ्तर से निकल के खेत में जाए ला जा खेत में ऐसे है जाता कुछ नहीं बा पानी कुछ हवा कुछ नहीं में आता पर देख ली जा हौजा और हैजा हमने के थी एगो चीज जे किसान लोग नहीं रहते हमने नहीं रहती जा देखा
0: किसान की बात करे थे भाई प्रताप टीवी रेडियो तो हाँ हाइजा बात है प्लेटफॉर्मा के जरिए हमने आजकल देखा था ऐसा जानत है ऐसा अभी जैसे बोला स्टूडियो से बाहर हमने खेत में जाए ला जब माटी के मोल उस सब कार्यक्रम काहे कि जब माटी के बात करी ला जाने सबसे अंदर रहे चाहे ला मटिया पकड़े के तभी जानब सब ओकर मोल कौन चीज है। तो आगे जो रहल जो खेती है उस सब रहल रहलन जब

0: और लोग के अभी तक ट्रेनिंग बाटे ढेर कुछ बाटे जो वर्कशॉप सब होला आगे उन लोग के मदद तू सब कैसे करत जात रहल?
1: हाँ ज्यादातर खेत का हमने खेत में जाते हैं
0: जी,
1: उन लोग के खेत में जाते हैं तब शाम के मिलत है जा दफ्तर में, दफ्तर में हाँ रेडियो रहल पर रेडियो के माध्यम से टीवी पर आल बाद में पर है जो करली जा जो माध्यम रेखा वन टू वन जाते हैं जा खेत में हमने भी प्रशिक्षण देवत हली जा पर प्रशिक्षण ऐसे ट्रेनिंग हॉल नहीं रहल ऐसा हमने कहाँ जाते हैं जाए देखा हमने के जो कोपेराचिव के दब अथी रहल लोग बुलावत हन जा हमने सोशल में जाते हैं जा विलेज काउंसिल में कभी भी हमने खेत में अथी एगो देख ली जा एगो ऐसा वृक्ष बा ओकर नीचे देख पाँच छः जना दस जना बुला के समझावत ले जा और कौन सी एगो चीज़ है देखा है ये जब आए ला जा कितना लोग कौन सी खुशी रह लन जा है जानकारी
0: जी
1: जानकारी लोग के मिलेला और टटका जानकारी हवे बीमारी हम जिक्र कर ली बनाना फेकल शुरुआत रहल पर हमने के चाह जनाई के
0: जी
1: और ऐसा जनाई के हमने के वो खेतहर के बुलैली जा वो अपन अथी बोलन जा ओकर खेत में कैसे असुविधा होता वो बीमारी से तैसे ही हमने खोजी ला जा हरदम हम बोली ला आज की चर्चा माटी के मोल जो भी है हमने तुरंत पहुँचा देवे ले जा तू लोग यहाँ एगो चीज़ है ज़्यादा लोग देखे लन जा और अब तक टेक्नोलॉजी चला बा देखा टेक्नोलॉजी बहुत है मोबाइल व्हाट्सएप बा फेसबुक बा हमने थे यूट्यूब बा इसा प्रोग्राम यूट्यूब में भी आवेला तो है देखा है ये जो ना आई ला जा हमने बतियाई ला जा लाइव मिलेला और कितना जाना अभी सुनत हुआ जा बाहर भी है हाई प्रोग्राम के माध्यम से बोले लन जा तो ऐसे ही है देखा हमने हरदम खोजी ला जा सरकार रह लागे हमने के जो एक्सटेंशन सर्विसेज रहल हमने आगे में गई ली जा फागे में तो हमारी ऐसा जो प्रोग्राम कर ली जा हे रेखा हमने के हित में केकर हित में काम करी ला जा हमने के किसान लोग हमने के आम आदमी जो पब्लिक बा कितना जना भी रसोई में हो जाए अभी सकेला मांजत हुई जा बर्तन पर सुनत हुई जा ये हमने के फीडबैक मिल जाला क्योंकि जितना जानकारी नवा चीज़ हमने हरदम बोलते जाइला जा और एगो चीज़ बा जब जिक्र कर ली जा 2016 में हम रही थी इंचार्ज जानकारी एफ ओ मास्यो सैपियर में हमर के हमके अथी बोला है देखा इनोवेशन कर नयापन आना तो नयापन जैसे हमके मिलल एक कुएली है जा लाइव प्रोग्राम में नहीं सकेला रोके
0: जी।
1: हर सप्ताह लगले जा एगो प्रोग्राम करे ई कर ली जा 10 साल हो गल है और है ये जो माध्यम अली जा कौन सी अथी होल माटी के मोल तब हे देखा आप पहला प्रोग्राम कर ला आज की चर्चा हौजा भी घसीट लेनी तोरा
0: जी एक पर हमने बतिया अच्छा भाई संजय अभी प्रताप जी बोलत हवन जो रेडियो और टीवी जो ऐसा जितना माध्यम बाटे आज तो सोशल मीडिया बाटे और कैसे वो अपन काम के कम्प्लीमेंट करत हुआ तुहर देखे में रेडियो और टीवी कैसन एगो जो ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन तुहर देखे काहे कि दुगो जिनगासो बाटे हमर लगे सामने एगो प्रताप जी हवन एगो तू हवा तनि सुन के बारे में बताओ
2: चाहे जब हमने किसान लोग के तो रोज के रोज भेंट कैला जा जैसे प्रताप जी बोलन जब खेत में जाप सा प्रशिक्षण देब सा या कोनो एगो के गोपमा करब जा एगो मीटिंग करब जा वगैरह वगैरह लेकिन वो सब सकल जला करे जब किसान हुआ भेंटाए नहीं भेंटाल तब ओके ओके हो जन रहल हमने के बोले के जन जन जन मिसाज रहा पासे करे के वो लोग के तब उन्हें सकल जाए करे और आजकल आज देखबा तो एगो नया दौर बा पहले तो कहना किसान लोग शायद सिर्फ मंडी या लौकौतिया लगे भेजतलन था अपन अपन सब्जी वगैरह फल अब तो देखबा इतना होटल बा रेस्टोरेंट बा ऐसे मीडिया लोग बा किसान लोग अपन अपन अपन रोज के रोज कहना लोग के समय ही नहीं रहेला और भेंट करे के भी कभी कभार कहना कठिन हो जाला तो ये जब रेडियो और टीवी के माध्यम द्वारा जब हमने आए ला जाता तो किसान सकी कहीं पर भी रहे आम जनता कहीं सकी कहीं पर भी रहे लेकिन जब रेडियो टीवी संगे जुड़ल बातें तो वो जन हमने बोला था जा तो वो लोग लगे पहुँचल जाते हाँ बिल्कुल अब जैसे बोला साल साल जब ऐसे

0: अच्छा लीगल, तब देखा टेक्नोलॉजी कैसे अब बदल गल बातें। अब हम जन प्रोग्राम आवेला जैसे आज की चर्चा हुए लेला या माटी के मोड़ लेला, तो फिर से ओकर डिफ्यूजन होला, फिर से चलेला टीवी पर, तो कोई जब लाइव भी नहीं सकल ओके सुने या जन समय ओके प्रस्तुत करल गया रहल टीवी पर वो लोग नहीं सकन जा देखे, तो सकें जा दूसर दिन दूसर बखत लेके देख ले, या तो फिर जेका लगे माइटी की सेवा ओकर घर में बा, जैसे कि रिकाप में भी देखे।
1: तो हमने बोल दे इलाजा जे यूट्यूब सुने के मन बात सांझ के जो 3 से 4 बजे ले फिर से सुन बजा, और वो टीवी पर 4 से 5 बजे ले सके अंजा देखे।
0: हाँ, मगर दोहला भाई चलेला। और अब देखा अब जन तोहर एमबीसी के जन प्रोग्राम बातें, चाहे माटी के मोल हो चाहे आज की चर्चा हो, दोनों यूट्यूब पर अब मिलेला। तो कोई भी जब ये प्रोग्राम के गाना नहीं सुन ली हो उस समय जब ये जब चलत हल तो दूसर कार्य में लगल हल, तो एकांत से जब घर पे वापस आए या अगले दिन सकी यूट्यूब में ढूक के तो सकी वो प्रोग्राम खोज के तब मिल जाए। तो ये जो सुविधा एमबीसी प्रदान कर रहा था एकर कैसे बोला सा मोल ना, तो एकर मोल नहीं सकल जाए लगाए, क्योंकि ये जब छोटा मोटा चीज़ हमने यहाँ बातचीत करी ला जा तो हमने के जो प्रकार से प्रभाव करेला जनता पर जाके अमल करेला जा एकर मोल नहीं है।
1: जी, इस सच्ची बात बोले हुआ था। चला माटी के मूल कार्यक्रम के बाद हमने अब करब जा, जैसे बोलत हुआ प्रताप जी उकर शुरुआत 2016 में ही शुरुआत हो रहा आज की चर्चा संगे, तहे जो कॉन्सेप्ट सुनवा बातें वो कैसे शुरुआत हो रहा और कैसे हमने के जितना खेती हर उन लोग के फायदे के बारे में हमने बतियात है जा, तो कौन एडिशनल जो बातें फायदा उन लोग के पहुँचल और पहुँचते आवता।
2: हाँ, ये बहुत अच्छा बोला, कौन फायदा और कैसे हमने कंसेप्शन हो रहा
1: जी।
2: इत जब भोजपुर चैनल के एथिरान हुसैन चौद नर्वदा जी बैठक कर ली जा कैसे करेगी, तो हमने बोली जा अरे देखा हर मास सकेला एगो प्रोग्राम करे, हम बोली नहीं हर हर सप्ताह से कब्जा करे कर ली जा बैठ ली जा, पर एगो चीज जब हमने सोच ली जा है देखा जब कृषि के बातचीत कर ली जा अकेले फागे नहीं काम करेला, हम के कितना स्टेक होल्डर्स है, स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड, सरकार बा, एमसीआईए बा, सर्विसेज बा, है जितना प्रोग्राम कर ली जा सब कोई शामिल हो लग जा सब कोई। हे देखा हमने जब गई नहीं जा उन लोग के भी है जा हमने के भाई डॉक्टर सुका अलन जा एमसीआईए से कितना जना अलन जा कर्मचारी स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड उन लोग के संगे मिला के ये सब प्रोग्राम जो कर ली जा, तब हे देखा एक जना एगो किसान बा उ सिर्फ एक के खेती नहीं करेलन, उ सिर्फ सब्जी नहीं रोपेलन, उ सिर्फ कैसे फूल नहीं रोपेलन, जो है जा एगो इतिया कैसे जा मिक्स क्रॉपिंग बगीचा है बगीचा में सकेला एग्रोफोरेस्ट्री अब तो बातचीत करत है जा ई सब रहल, तो ई सब चाहत हम के उ लोग के जाए के बतलाए के है जा तक कि हे देखा हम पशुपालन है जाए नहीं हम कितना प्रोग्राम कर ली जा पशुपालन गाय बकरी हमने के भैंस हमने के काय जो छोटा अथी पक्षी है ऊपर कितना हमने अथी कर ली जा, पर हे देखा एगो चीज जो माटी के मोल तब पहला कर ली जा हवे जो अथी कर ली जा एगो पहला जुटाव कर ले रहे जा मोतायलोंग में मोतायलोंग में जहाँ जहाँ गढ़ ली जा उ लोग के बुला के और प्रोग्राम कर ले जा और सब कोई के आमंत्रित कर ले जा और ऊपर भी प्रोग्राम कर ली जा देखा माटी के मोल होल गई ले जा है देखा तोहर यहाँ देख अभी याद बा पहला जोन रहल होल में हो जा हमने के रहल हमने के भाई चिकोगी त्रियोले से कौन सी अथी अथी करा था नर्सरी रहा छोटा छोटा पौधा हौ बखत ढेर ऐसा नर्सरी नहीं रहल छोटा पौधा तोरा मिली अथी के मिर्च के मिली बैगन के मिली पलामून के मिली इस सब पौधा हो जा त्रियोले में करत जब प्रोग्राम कर ली जा जाने ला कितना जना देख के नर्सरी स्थापित कर दिले हन जा है चला जाने के और एगो चीज बा हम बोली ला जा देखब तब न करब
1: जी
2: बतियाव थी जा देखा इस साल से इतना लाइव हो गल बा हम भी आईली लाइव हम डेमोस्ट्रेशन भी कर ले कैसे चाहना इस्तेमाल करते ये सब हमने के चाहना टेक्नोलॉजी हमने भी अब हम के याद बा कैसे हमने खेत में जा था ली जा क्योंकि हमने भी प्रशिक्षण ले लिया जा कभी बाहर

0: से कोई एल्बम के प्रोडक्शन दे या बाहर गलें जा तो सब हमली हे देखा है माध्यम के माटी के मोल सब हम बैठ के हम बोल जा चाहे ना जाए के करे के और ऐसा ना ऐसा प्रोग्राम हम कर ली रेखा ढेर जना सुनन नहीं जाना था ढेर जाना नहीं तो हम कर ली स्थापित कर ली हे रेखा एगो प्रोग्राम करी ला जा सुरन पर ओकर से कौन चीज होला तब देख ली जा सुरन से सकेला सामोसा होई सब कोई अचार खाला तरकारी खाला पर ओकर से कितना चीज करल जला ई बतले ली जा ऐसे ही हमें अनली जा कितना प्रोग्राम नयापन अनली जा मॉस टू हमें के स्नोपी हम जा बेलते गई जा हमने के दादा वो बतलैलन मॉस टू ढेर जगह नहीं जा था रोपाला हाँ रोपाला निर्यात करी ला जा नहीं हमने बाहर से मंगाई ला जा तो सब है ये माटी के मोल हमने खेत में अब जितना किसान लोग हमने के बोली ला जा आई के उन लोग के हमने के छैला के बोले के तू लोग बहुत अच्छा काम करत हुआ हमने के बुला के बांटा थे जा यही जेन चीज करत हुआ जा हरदम एक वो चीज़ हम कर ले आई और चाहेला इसने करे के जब हौजा गईली जा हौजन देख ली जा ऊपर छैला बातचीत करे के क्योंकि हम हरदम बोलते आए ला जा जोन चीज ऊ लोग करे लन जा तब हमके कबो हमें बोली ला जा हे देखा ढेर जना हमें के शिकायत करे लन जा कोनो चिड़िया उ लोग के अथी घिस लेवेला छोटा पौधा पर हम एगो दादी गईली दागोछिया में ऊ जाने ला कौन चीज करत हन और काम करे लन मीगे काट काट के दरिया में डाल देवेलन चिड़िया नहीं आवेला हौजा जब कलमसिया में गईली हौ एगो दादा रहन ओ चिड़िया का करे जैसे हम एथी नहीं पसारे लीजिए लुगा ओके वो ऐसे एथी प्लास्टिक एथी डाल हम बोली तो ये हम सोचली खेत में वो लुगा पसारे लन बोला नहीं रेखा देखा है जा बैठा हो जा एगो चिराई है जाने आई सकेला वो खेत में आवा था रेखा यही जब कुछ गईली जा हौजा देख ली जा और कौन सी अच्छा होता ई बतलाएला जा और कब वो हो जाला है देखा प्रोग्राम हमने के पानी चलावेला हवा उजाला हमके सिर्फ याद बा दस बरस में एक बखत हमें प्रोग्राम नहीं सकली जा करे
1: जी।
0: माने कि हमने ये देखा खेती हर लोग हमने के जोन पशुपालन लोग वो एथी पानी आवेला बरसात मूसलाधार बारिश उ लोग के चाहेला काम करे के चाहेला खेत में हमने उ लोग के साथ गईली जा मूसलाधार बारिश हवा बा साइक्लोन में भी गईली जा प्रोग्राम कर ली जा बतलाए के कि हे देखा कैसे वो लोग अपन जीवन ले जालन जा
1: तो जैसे बोले थे बदलाव आल और कई चीज के जो लोग सामना कर ले माने कि हमने बात करी ला जा चैलेंजर्स और हमने देख ली जा कि खेती बाड़ी में समय समय पर कितना उस सब आल बातें चैलेंजर्स के सामना कर ले हवन हम हजा पर एक चीज देखा था 2008 में एग्रीकल्चरल इनपुट्स के कीमतों में जो जबरदस्त बढ़ोतरी हो रहा है एक बारे में तनि सुन बतावा और फूड सिक्योरिटी फंड स्कीम्स एक शुरुआत कौन तरीके से हो रहा और आज जो ग्रांट्स यानी कि जो अनुदान वो सब हमने के खेतियर लोग के मिले तनि सुन एक बारे में बताओ
0: हाँ ये देखा आज की चर्चा हरदम हमने एक स्कूप दे हरदम हमने हरदम हम बोली ला देखा पहला हम जब आवब इ मंच पर या माटी के मोल बुलब कौन योजना रहा वहाँ पर और योजना शुरू हो रहा 2014 में देमिल काथोज में पर ऐसे जब होल 2016 में लगभग एथी लॉन्से हो रहा जितना स्कीम नयापन आ रहा हमने आगे लेके जाइए देखा हाइड्रोपोनिक्स पर बहुत जिक्र कर लीजा गुतागुत पर एथी कर लीजा और एगो चीज़ जैविक खेती
1: जी
0: जैविक खेती जो ढेर आज चर्चा होता कैसे छाला हमने के अच्छा तरह तरीका अपनाए के जब खेती करी ला जा कैसे देखा होल हरदम बोली ला जा हमने के जब रिवोल्यूशन होल कृषि में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आल जो जो लेजिस्ट्री एथी बनावत जा अमिनिशन से हम वो कन्वर्ट हो गया जा पोजिशेमिक करे लगल जा तो ऐसे ही हमने पर हो लगल हमने के आबादी बढ़े लगल पॉपुलेशन तब ओकर बुलंजा चाहेला ये देखा हई खाद छाला इस्तेमाल करे के तब पेस्टिसाइड आए लगल पर हमने के आज छाना जाने के हमने के जो नवयोन में हमने के पर्यावरण पर असर करता और पहला असर है देखा हमने के माटी ये बोल जा माटी के मोल ओके बिगाड़ देव अपचा ओके छाला हमने के अच्छा से संभाले के एगो पहला और जब संभाले ला के संभावेला हमने किसान लोग कम करवा लोग पर्यावरण और एगो दूसर चीज तब

0: कहाँ जाला हमें के रसोई में हमें के रेस्टोरेंट में हमें के पर्यटक लोग आवेलन जाते वो छाइला जो हमें पैदा करी जा छाइला सुरक्षित तो यही माटी के मोल ये सब सिखाई ली जा नवा टेक्नोलॉजी आने के छाइला आने के अभी कितना जी प्रेसिजन फार्मिंग पर बातचीत करते जा हरदम हमने आगे जाते जा हमने बतलाए ला जा तो यही ये है प्रोग्राम हम थे आज चीज चर्चा सब कोई देर जना हेरे का हम तो रोज लगभग हमके कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेला हमने के ब्लेसिंग मिलते रहेला तब ना आगे लेकर हम जब आएला था हम जब लेंदी होला हम कुछ भी होला
1: के बोले ला।
0: हम नहीं छाती और चाहिला आई के क्योंकि हम जाना थे जा कितना जना हमने यहाँ जानकारी बा उ लोग यहाँ भी जानकारी बा हमने के खेतिहर लोग ना पशुपालन क्योंकि उ लोग भी रोज में लगल रहेला जा अब भैया रेखा एगो हम एथी करत है माटी के मोल जब कर ली हमार माताजी बोला नहीं रेखा जब पिताजी बैठा था बतान अच्छा रहत हमार एगो लड़का हौजा टेलीविजन पर बतियाई बाद में जननी है तो यही पर उ लोग के उ लोग सोचा था जा क्योंकि हमने प्रोग्राम करते जा ढेर बतिया था लीजा और कितना अवसर लोग आवा था खेत में और हाउ जो फार्मिंग न्यूज आगे मिला था लगभग हर महीना हम हमार मेज पर रहल सब हम खोल के देखा थली और ओके बांटा थली तो वो बताए जैसे बांटे तो काहे नहीं वो टीवी पर बांटी हम तो ऐसे ही होल हे देखा तब कर ली जानकारी दे लगली हमके कितना जाना कैसे बताए जा कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेला ब्लेसिंग्स मिलते रहे सब कोई के हम बताई जे जे हमके टोक देवेलन हम अथी बताए कितना कॉम्प्लीमेंट देवे ऐसे कोई चिता दिले बाहर का प्रोग्राम गलत हुआ कुछ हो जाए ऐसे हम बोली नहीं हमके चाहना पॉजिटिविटी पॉजिटिव चाहना हरदम रह के और ये प्रोग्राम हेरे का भाई संजय संगे हुआ हम बोली इस सफर में ये गांव हुआ कृपया से ये अथी पिता बोस रोज दिखेला हम भी मोतायलोंग से पिता बोस इस सफर में कृपया हुए परिवार स्कूल कृपया ही अथी हमने सेकेंडरी स्कूल गई जा फारे में आई जा और एक के यूनिट में काम कर रहे थे
1: बाद में इंकरा हमने खींचा जा माटी के मोल में
0: हाँ तो अभी घिंचा कर बा घिंचा कर बा घिंचा कर बा अभी ये देखा है वो प्रशिक्षण देवा था सैपिया में बैठा तलिन जा जो जानकारी हमने के जो अवसर बोला था जा है देखा है हमने लॉसमा कर ले रहे जा ये थी हम काम कर रहे थे जू बरिस में हमने सिर्फ यूट्यूब पर गई जा हम इतना छः बरिस आगे हम निकल दिले जा प्रोग्राम
1: जी
0: संगे ये देखा हम इनकी जानकारी क्योंकि यूट्यूब में देख लीजा
1: जी
0: हो जो सुल्तान जो अथी टमाटर के ये थी बात हमली के जो किसान बा छः बरिस आगे रोप दिले और हम जानकारी दे दिले जा
1: तो एगो प्रश्न पूछा भाई संजय जो हमने बात करे थे जा फूड सिक्योरिटी फंड स्कीम्स एक में तुहर देखे में कोनो बदलाव होल कोनो विकास होल बाते और ये सब स्कीम्स जो बातें बदल से समय के साथ जो हमने के किसान लोग हवन जा उकर से फायदा उठावत हवन जा
2: हाँ बिल्कुल और समय के साथ बदलते रहेला और कन्ना समय के साथ अडाप्टे हो ले जाला
1: जी
2: जैसे कि आज देखब जाके कम करवा कम थी बा मॉरिशस में तो उस प्रकार से देख बता फूड सिक्योरिटी ग्रांट स्कीम में आल गंदा परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट तो किसान लोग सकी इक्विपमेंट खरीदे या जो ट्रैक्टर वा वो भी खरीदे समय के साथ जो ग्रांट मिला बढ़ गल 250 से 350 चल गल हज़ार चल गल अब देखबा कैसे किसान लोग बोला देखा खेत में चोरी होता तो हमने ये सोच के देखा सोची ला सकता कैसे सकल ला किसान लोग की हमने सहायता प्रदान करे तो से कोई स्कीम आल परचेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा तो जो जन किसान लगावे ला तो लोग बोला कैसे हमने के वो किसान बा वो गनला जनाना रोपे ला तो बोला जब जनाना पके के समय ला था सब चोरी हो जाला तो अब किसान जब है लगा दे ले बा तो ओकरे लोग ला कि चोर बच के रहला था ना क्योंकि गाड़ी के ओकर नंबर ओकर मुँह सब लौकेला और आजकल जो कैमरा बा वो ए आई कैमरा हो गल बा जब कोई आवेला दूर से तो ऐसा ऐसा कैमरा किन बा तो अपने से फोकस होके हाँ सेंसर सब बा फोकस होके तुहर गाड़ी के प्लेट या तुहर तुहर चित्र वगैरह सब निमन से निकाल देवेला अब समय के साथ देखा अब टेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं जाते अभी हाल ही में अभी प्रताप जी अभी बुल्लन तो एक नवा स्कीम

0: कल बात प्रेसिजन फार्मिंग पर और जो एआई पर आधारित जो सकी उत्पादन के बढ़ाए ओकर पर एगो स्कीम निकलबा और वो जला 2 मिलियन रुपीज तक 50% के फंडिंग होला लेकिन 2 मिलियन रुपी तक चल जला। तो इस प्रकार से अनेक ऐसा ऐसा सुविधा आवेला बढ़ेला या फिर नया नया आवेला ताकि समय के साथ हमें सकब्जा चले
1: जी।
0: और आज बोला तो अच्छा कि किसान लोग इस सबसे सुविधा उठावे जला कि नहीं तो हम एगो उदाहरण जो बोला दू गो देला देखबा कितना किसान के आज खेत में और सीसीटीवी के कामयाब आते
1: जी।
0: एक में बहुत किसान एक में किसान लोग बाद जो अपन से भी किन ले आधा तो पैसा डाले लेकिन एक में बहुत किसान बाद जो स्कीम से लाभ उठा ले और हाइड्रोपोनिक के बोलब सा ग्रीन हाउस के तू तो पूछा नहीं आज देखबा तो शायद ठीक से नहीं सका बोले लेकिन आज देखबा ये 5 साल में तकेला हाइड्रोपोनिक के जितना मेतकारे बाम्बू इसमें तकेला दुगना हो गल। अभी हमने 1 मिलियन मीटर स्क्वायर से ज़्यादा चल गए सर हाइड्रोपोनिक में अभी 2025 में। तो इस प्रकार से हाँ ये ग्रांट स्कीम और एक चीज बा कि सकेला हमने सोचिला सा कि नहीं तो ये बड़ा किसान बा ये छोटा किसान बा नहीं सब लोग आके कैसे लाभ उठावे छोटा किसान बा बड़ा किसान बा कोई खातिन सकेला 20,000 ज्यादा बा कोई खातिन 2 मिलियन ज्यादा बा मैं सब कोई पर सब कोई कमी से लाभ उठावेला
1: जी। तो हमने बात करब जा तनी सुनो और माटी के मूल कार्यक्रम में प्रताप जी हमने इतना चीज पर बतेली है जा हमारे से आगे नवला जी रहलन और कई जना कर ले हवन माटी के मूल इतना टॉपिक पर बात होल बाते हार्वेस्टिंग प्रोडक्शन पशुपालन एकर पर हमने जाइनी जा हमने गैली सा पानी हो घामा हो लापू सब भीड़ मानी कि जर जाएला सा पर हम जो मजावा आवेला तोहर मन पसंद जो टॉपिक रहल प्रोग्राम रहल और भाइयो तोहरो से पूछब तुहु कोलाबोरे कर ले हो आज माटी के मोल कार्यक्रम में ता तोहरा कौन अभी जो ऐसे तो नहीं बोला पर कौन एपिसोड तोहर जो फेवरेट बात है दोनों हमने के बतावा जा।
2: बहुत से प्रोग्राम करे 10 साल हो गल है पर जब जाएला एक स्थान पर वो हरदम मेमोरियल हो जाला
1: जी
2: एगो मेमोरी रहना क्योंकि हो जा 2-3-4-5 घंटा हो गल बा कबो रात हो गल बा रात के भी प्रोग्राम कर ली जाए कहते ऑयल में गई ली जाए हाँ सुलीता पर क्योंकि वो चाहत रथवे के जाए के तो हम ही बोली जा नहीं एक दिन के जब से कौन चीज लौकी जो हाउ थी चाहत लिकिप में वो रथवे के चाहत बतलाए के बिजली के तो हो जा गई ली जा एगो है एगो जब अभी अथी में बताए है जो अथी रहा क्योंकि एगो नौजवान के पास गए है नौजवान हमने के जो बेटा निकेल गाम जो कमन है ये अच्छा बा बोले के वो जो चीज करत हुआन तुता अपसुलिता होता ये चार पाँच बरस हो गल मॉरिशस में बा पर हमने के चाहत बतलाए के वो नौजवान कैसे जो हमने के रासायनिक पदार्थ बिना डलना ओके चाहत कंट्रोली करके ये हमने गैनी जा सिखाई पहला हाँ अभी भाई संजय बोला हाइड्रोपोनिक्स पर ढेर चीज बोलीला जा पर एगो चीज पर हमने बोलीला जा क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक यूनिट बनाई ला जा वो ज़्यादा थी लगभग 30,000 1 मीटर स्क्वायर है लग जला थी उपनि निवेश करके बतलेली जा कैसे छाना पहला अच्छा हमने के जो एतिबा बनाए के अब जो कैसे चला खेती करे के शुरुआत में कौन हमने के चला प्रिकॉशन ले के अब कैसे चला निपटे के हमी तो जब गईनी जब देख ली जा हमने के जो भाई एगो दूसरा हमने के एक्सटेंशन ऑफिसर कृष्णा कामसामी सब मिल के तब हौजा बदले ली जाए देखा तूता सकेला काबू में आए अब ढेर जाना भाई शंभू के भी साथ लिमायान में गई ली जा हौजा भी हमने अथी कर ली जा जो हमने के रासायनिक पदार्थ दलब जा वो कामे नहीं आई हमने के छाना तब भैजा ढेर चीज हमने कौन सी बने बतियाई ली जा IPM इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट माने कि हौजन बीमारी बा हौजन हमने के कीड़ा बा लोग के सामना खरीते विभिन्न प्रकार के हमी के छाना बदलाए के पर एगो हम बोल दे बताए एगो अभी ले अथी बा हम एगो प्रोग्राम कर ले रहे जा अथी मालेगा में लसुन पर गई ले जा, तब हमने जब बीत गया तब खाए लग ली जा, तब गई ली जा मालेंगा के क्योस में बैठ ली जा नर्मदा जी रहा।

0: रहन हमी के बाजी गाते रहन हमी के जो एथी रहन कैमरा मैन हम बोलिए देखा सूरन पर हम एगो प्रोग्राम करब जब हौजा से लौका तब मोता अलूँ तो मोता अलूँ कहीं के लिमा ये तो ज्यादा रोपाई लोग नहीं भाई प्रताप नहीं नहीं नहीं करिए जा हम बोली एथी बा इतना रोपाला जब जब शादी में तो हवे कुछ मिलेगा जब हमके कुछ नहीं रही वही मिला तो हम कुछ नहीं बोली हम बोली बाद में तो कुछ नहीं बोली उन लोग के सिर्फ बोलनी है देखा उ दिन जाप जाम होता है लोग में प्रोग्राम नहीं बोली कहाँ जाप जा जब गैलन जाता है उन लोग तो बोलन जा ये तो चौक गैलन जा हमने के जो कैमरा नहीं हवन अभी भाई संजय माथा पलत रहा वो जब हाउ प्रवेश करलन जब प्रोग्राम कर ली दे ली जा प्रवेश करलन घर में जब देखलन हाउ विभिन्न प्रकार के जो हमने के तैयारी हो गल बा सूरन के समोसा सूरन के कुचा सूरन के तरकारी
1: आपके बोली नहीं
0: हाउ सब जे हाउ इतना अपने आप आंगन में चले गए फूल आने लगे हाँ। जहाँ सजाई के तब यही तब हम प्रोग्राम में कौन सी दलनी हे रेखा रोपी ला जा पैदा कर ले जा हमने के यूनिट बा उतर में हरदम बोली आ जा आगो प्रोसेसिंग बतलाए ना जा कैसे कुचा अचार चिप्स पर हाउ जो पकवान होला अभी गैली जा है देखा न्यू ग्रोव में हमी के जन भाई बाचू बतलैलन कैसे सूरन और गोपा और अथी चोले छैना करे के तो ये सब हमने के छैना है देखा ढेर जना लड़का लोग उ लोग के छैना है ये छैना सिखाई के
1: बोकला पर हम
0: बोकला पर यही अभी ध्यान बा जो आर बोल लिया जा ये सब बा रोपाला पर और कोई जब एथी में जालन जा मंडी में सूरन के रूप देखे नहीं सके लाकी ने छिले कैसे छिलाई पर हमने ये सब बतला दिला जाए देखा रोपा तो रोपाए होला वो एथी हो जाला हमने सकब जा धो धा के उ सकेला रसोई में कोई नहीं काटेला तो हमने बतले जा कैसे चलना काटे के कैसे चलना पकवान अथी करके पर और एगो चीज पर ध्यान जब बोलनी जा हे देखा कुछ ना कुछ रोपबा खैबा हम की सेहत पर बैठलैली जा है देखा अभी अथी आवा था दुर्गा पूजा ढेर तब हम जब रिसर्च के लिए हो जा भारत में जब अथी ऐसा ऐसा पर्व आवेला तो उ लोग सूरन खालन जा काहे क्योंकि वो लोग के पेट भर ले रहेला फजीर के खा ले तो ऐसे ही हम बहुत ध्यान देली रोपबा हाँ मंडी में जाता और एकाध गो चीज रोपत है जा और जैविक खेती सकेला अपनाई भाई संजय तो न जाने लें जब सूरन रोपा जला वो बोरन में कुछ रासायनिक पदार्थ नहीं डाला कुछ नहीं बीमारी उमारी नहीं होला ऐसा चीज हमने के छाया रोपाई तब करे के और पोपाजे करे के आगे लेके जाए हमने के मयोग बा हमने के बतात बा इस सब सकब जा अरुई बा हमें सकब जा जैविक खेती अपनाई तो ये अपनावब जा किकर हित में बा हमने के माटी हमने के जो आम आदमी अब बतलाए थी आम आदमी देखा बहुत हुआ हम जब प्रोग्राम करीला जो फीडबैक मिलेला और कोई ढेर जना अपना हुई लंजा और कोई जब जैविक बोल लिया वो लोग अपन छत पर ढेर रूफ गार्डनिंग पर हमने एथी कर ली जा वो अपनावत हुआ जा कितना फीडबैक हमकी तस्वीर भेजे लन जा ये देखा अभी एक जना जो गोभी बा बतले ये देखा ओकर छत पर फूल गोभी गोभी सब रोपेलन इछाना एथी करे के तब पहला जो कार्यक्रम हो रहा हम गरली फिल्माई करे हमने के जो भाई मोरा बकस रहन सर ओकर दूसरी मंजिल पर एगो रूफ गार्डनिंग में जब गैली वन एमबीसी के नीचे सड़क पर आल हम गैली बतलाए तब लोग नहीं आवत हो अंजा तो हम गैली हम बोली काहे नहीं आवत है कैमरामैन का पता कौन सी है प्रताप जी कौन सी है जा बा हम बोली उतरब तब न जाए तब गैलन छत पर तो बोले तो अंजा है जा सात तरह के आम बा मयोग रोपा गल बा गाँछी अबोका के गाँछी बा फूल गोभी सब इतना दू गो प्रोग्राम सकेला हो जाए तो यही बोलनी तब ये प्रोग्राम हमने सिर्फ खेतिहर नहीं हमने बोलनी जा है देखा अपन आंगन में ब्रिक दला गल बा कोलता रोगल बा सकबर दमला में रोपे कोना एगो कोना माटी बा सकबर रोपाई करे छत पर दमला में सकबर जा रोपाई करे हजा तक कि हम चौंक गैली जहाँ जहाँ जब अथी गैली जा हम बोलते दूसरी तीसरी मंजिल पोटलिस में रोपाई होता मोरिंगा के गाँछी देखा था हमने के जराना सब ऊपर दूसरी नहीं तीसरी मंजिल पर रोपा गल में तो हम भी तब बाँटे लग गई हम सकेला करे और ढेर जना है देखा सिखैली जा है प्राची

0: कुछ ना कुछ पैदा करत हुए जा तो यही बा हमने बात है जा हमने के कौन सी उत्पादन बढ़ाई की अपन घर पर सकबा अपन छत पर हमने के किसान लोग और हरदम अभी बोलत है जा और कोई बया था 50,000 बीघा जमीन ऐसे ही छूट कर बा
1: तो चले नहीं छूट ले दिया जा काहे कि हम अभी बखत देखत है हमने के प्रोड्यूसर शीतल हम की भगैया से अभी काहे कि अच्छा लगा था सुने के है जन कहानी सब बातें है जन जितना ले एक्सपीरियंस बात हर तो भाई तेरे सुन संक्षिप्त में तो हो रूप हमने जानी आ जा जन एगो प्रोग्राम रख कृषि दर्शन ना आज तो आज की चर्चा तेरे सुन ईल एक्सपीरियंस वा के बारे कौन फरक बा ईदू ले मिशुआ में और तो हर एगो जन जन एक्सपीरियंस बाते माटी के मोल संगे
2: अच्छा नहीं बहुत फर्क है कृषि दर्शन हम तो शुरुआत करें केपिप से केपिप के स्टूडियो में हुआ से लेकिन कृषि दर्शन एगो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो यानी कि जब हमने एगो विषय चुननी जा तो सकब से एकांत से वो विषय पर काम करे ओका लिखे ओके निमन से ओकर पर जांच पड़ताल करे तब आके यहाँ पर ही ठीक से ओके पढ़ी ला जा
1: जी।
2: बात भी कर ला सा लेकिन ओकर पर रेफरेंस करके पढ़ के तब ओके रिकॉर्ड होला फिर से ओकर पर एगो एडिटिंग भी होला यानी कि कोनो खराबी वगैरह रहल तो लेकिन निकाल देब सा बीच में खटखटाहट होल हिचकचा गए निशा तो वो भी निकाल देब सा तो प्री रिकॉर्डेड रहला लेकिन आज की चर्चा जो बा अभी प्रोग्राम जो अभी चला था लाइव बातें यहाँ पर जब तू प्रश्न पूछा तो यहाँ पर ही चला दिमाग के जल्दी जल्दी काम करे के
1: एडिटिंग कुछ ना कर कुछ ने बात
2: कर कुछ ने बात तो यहाँ पर ला हमने के अनुभव के साथ बताए के
1: जी।
2: एक आध चीज तू जब पूछे ला यहाँ पर ही या कहीं पर एगो लाइव प्रोग्राम चले ला तो जन पूछे ला तो उतर सकेला कोनो पुस्तक में लिखल ही नहीं बातें तब कहाँ से वो उत्तर आए उस आवेला हमने के अनुभव के साथ किसे हमने के भाई नन अनुभव देर बा तो अनुभव से बतियालन सा तो वही अनुभव के साथ हमने बुझला जा जो हमने के उचित लौकेला और जो ठीक बा वही वही तब बुझला जा और माटी के मोल जो बोलला सकेला एगो अन्याय हो जाए आज हम एगो चुनाव तक हम जल्दी जल्दी में हम थोड़ा दो तीन गो बोल लेला एगो तब बातें थोड़ा याद हो नन आई हमने वाले दे प्रेत में एगो कल निजा उकरा जासिद पर वो काहे हम खादिन प्रिय है क्योंकि वो हमने एगो ऐसा समय पर वो प्रोग्राम करनी जा जन सकेला लोग सोचते हुए कि खासकर किसान लोग की ओकरा जासिद के ओकर कंट्रोल मैनेजमेंट करे खातिर खाली रासायनिक पदार्थ चाहला और हमने ऐसा एगो प्रोग्राम करनी जा कि जाके देख ली जा कैसे पायाज और कोक्सिनेल मल्चिंग और कोक्सिनेल सकी हमने के सहायता करे तो एक खातिर श्रेष्ठ बात है ओकर बाद और एक दू गो ऐसा प्रोग्राम होल मैं लेकिन एगो बात श्रद्धांजलि के रूप में नन जी अभी बोलन कि एगो प्रोग्राम रहल हमने के भाई ओकर नाम बजला मुस्तफा महबूब अभी इस संसार में नहीं होन लेकिन ओकर संगे वो प्रोग्राम कर लीजिए कर लीजिए जा सन 2020 में शायद कर लीजिए जा जुलाई में तो वहाँ पर ही कैसे टमाटर में कैसे टमाटर मोटा मोटा मोटा मल्चिंग के साथ वो भी कम रासायनिक पदार्थ के प्रयोग कर रहन तो ये बातें और तीसरा हम बोला वो हमार प्रोग्राम नहीं है ये हम नन के प्रोग्राम के देख के हम बोला था हमके एगो चीज़ बहुत अच्छा लगल हमके लोकल की हमने के जन फागे में नया पीढ़ी बा खासकर महिला लोग जन बा हमने के जन कोलेग बातें कैसे रिश्मा जानकी प्रसाद बा और देख ली धीमा बातें धीमा बातें हमके जन प्रसन्नता होल देख के क्योंकि ये दो हमारे जन कोलेग वन छा वो लोग हमने कहते स्वाभाविक रूप से भोजपुरी या हिंदी के बातचीत नहीं कर लन जा हम तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं वो शायद उनका बात नहीं कर सकते हैं लेकिन दोनों के देख के जन हाउ पीछे से जन कैसे बने जन जन जन जन साहस के पॉजिटिव कलंजा आके टीवी पर बचाए खातिन क्योंकि वो लोग भोजपुरी या हिंदी स्पीकिंग के नए अंजा लेकिन सीखलन जा आके बाद हमर दिखे में ई अपने आप में एगो एगो बहुत अच्छा चीज है ये नया पीढ़ी के चला सीखे के कैसे इसे जिफो चला करे के और आशा करते हैं कि आगे जाके सकेला माटी के मोल लोग के संभालियन
1: काहे कि अभी हमने ये जाननी जा सुनी जा कि प्रताप जी तू अभी रिटायर हो जाए बा तो हमने लगे हम देखा था खाली दो मिनट बाकी बाटे तो अपन सफर के बारे में तनि सुन बताओ और तोहर खातिर ये एगो चैलेंज है प्रताप जी जात होवन अब एगो प्लास्मा जैसे सकब सब बोले हो
2: जो भी जे भी आए माटी के मोल के संभाले तो हमने पर निर्भर नहीं करेला वो तो निर्णय वगैरह होला लेकिन हम एक चीज का बले

0: कि हमने की संस्कृति में एगो चीज बोला गया बा कि शिष्य के चला गुरु के चला ओकर मान रखे के और ओकर से जस्ती आगे जाए के
1: जी।
0: तो इस प्रकार से हम बोलब कि देखा माटी के मूल जहाँ ले आल बा शुरुआत हो जहाँ ले आल बा नन के कमे बहुत बड़ा हाथ बा ई कोई नहीं सकी एकर निकारे। तब हमनी के चला देखे कि जे भी माटी के मूल के अपन कंधा पर ले ओके चला और ज्यादा आगे ले जाके नयापन आने के ताकि बरकरार रही
1: चले रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग के कंधा पर चला।
0: बिल्कुल
1: प्रताप जी तुम्हारा मुझे लाफ है।
2: हाँ हम तो बहुत खुश हो जाम रेखा चाहे ना आगे लेके जाके और धन्यवाद इतना कॉम्प्लीमेंट सब कोई मिलते चला है ई बा और है जो प्रोग्राम आज की चर्चा माटी के मूल चाहेला और बढ़ते जाके काहे बढ़ते जाके एगो हमने नहीं बतली जा महिला महिला लोग अभी जाने जा हमने के जो दूगो जिक्र करान हमने के अवसर हो जा ग्रीष्मा जानकी पासार और दीमा बैशिया रेखा नौजवान नया पीढ़ी के बन जा उ लोग के हमने ई माटी के मोड़ में अन ली जा उ लोग ई प्रोग्राम आगे और भाई संजय तई तब बचाया कि बोल जा हमने किस देश से है जहाँ जिस देश से गंगा बहती है और है देखा है माध्यम बा अभी है जो भोजपुरी बा है ये तो अभी सब कोई सुना था वजह हमने के जो भोजपुरी जो चीज बात करते है जा ऐसा हमनी भाषा यदि तू लोग भी अपना दे हम ये अपना दे रहे जा ताकि तू लोग यहाँ पहुँचा था जो जानकारी
0: और अपना प्रोग्राम देखे ला सीखे भी खाते
2: सीखे बाकी
1: हम ये हाई जा सीखते हाई जा
2: बस खूब देव आप कौन सी करब भोजपुरी के विषय
1: फिर से आइया। तो आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी और भाई साहब बहुत धन्यवाद प्रणाम।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिला लीजिए, सफेद के चार बज रहे हैं।
4: ट्रकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 6:04 बज रहे हैं। ये सुनते हैं समाचार करोना के साथ। नमस्कार
3: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। आज सुबह पोर्ट में शुगर

सिंडिकेट की सालाना महासभा लगाई गई, जिसके दौरान सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। वे निकोला मिगहो की जगह ले रहे हैं, जिनका ये कहना है कि 2025 में चीनी से होने वाली आमदनी 10.4 बिलियन रुपए पार कर गई। उन्होंने कृषि उद्योग मंत्री से बागास के दाम पर फिर से गौर करने की भी मांग की, जबकि मंत्री अरविंद बुलेल ने गन्ने सेक्टर के लिए श्रम शक्ति मजबूत करने के वास्ते दिसंबर में 600 विदेशी कामगारों के आगमन का ऐलान किया। क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड ने 100% रिसाइकल की जा सकने वाली पेट बोतलों की एक नई उत्पादन लाइन में 300 मिलियन से अधिक रुपए का निवेश किया है। इसकी लॉन्चिंग आज की गई। अवसर पर मंत्री राजेश भगवान ने घोषणा

0: अमिया मियां ने बताया कि तैयार किया जा रहा इंडस्ट्री बिल औद्योगिक विकास के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा जिसमें विविधीकरण और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दुनिया भर में पेय पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है और कि 2025 तीन दशकों से ज़्यादा अवधि के लिए सबसे सूखा साल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। मॉरिशस भी इससे बचा नहीं है। उदाहरण के लिए माहोवाक्वा को ही लें, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% का चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। देश के पूर्वी प्रांत लावांचुए में आज सुबह एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। एक एनटीसी बस एक लॉरी के बीच टक्कर में 70 वर्षीय लॉरी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे जिनमें से 6 अभी भी फ्लाक के साथ अस्पताल में भर्ती हैं। विदेश में फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करते समय एक हादसा हुआ। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गई जिससे 3 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: आपके सितारे
4: सोमवार 28 सितंबर घड़ी मिला लीजिए 4:04 होने को है। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर शाम के 6 तक हम आपके साथ साथ रहेंगे। सो कैसे हैं आप सभी? मंडे का दिन उम्मीद करते हैं अच्छे से बीत रहा होगा और आज तो मौसम भी कभी धूप तो कभी छाव तो कभी बारिश तो कभी हल्की ठंड आँख मिचौली हो रही है। और ऐसे बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। और अभी के लिए हम आपका ख्याल रखने वाले हैं खूबसूरत गानों से अच्छे अच्छे प्रोग्रामों से। और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं क्वीन ऑफ मेलोडी, यस क्वीन ऑफ मेलोडी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी के बारे में। आज ही की तारीख यानी कि 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को वो चल बसी थी। तो आज हमारा आपके सितारे प्रोग्राम होगा लता जी पर, इनके गाए हुए गानों पर, इनके जीवन पर। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे प्रोग्राम आज डेडिकेट हमने किया है लता जी के नाम। आज उनके जन्म तिथि हैं। आज ही की तारीख 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। यस, इंदौर मध्य प्रदेश में। और इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर वो भी गायकी और थिएटर से जुड़े रहे, और कहीं ना कहीं गायकी में इनकी भी रुचि बचपन ही से रही है। ऑब्वियसली अगर लता जी की हम बात करें तो जो नाम इन्होंने गायकी के क्षेत्र में कमाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। ये जो है इनके अन्य तीन बहनें हैं, इनके एक भाई हैं मीना, आशा, उषा और साथ में हृदयनाथ, और सभी जो है संगीत के क्षेत्र से और गायकी के क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए रहे हैं। और लता मंगेशकर जो है काफ़ी छोटी थी जब इनके पिता जो है गुजर गए थे, और उसके बाद जो है इनका जो जीवन है काफ़ी संघर्ष से भरा रहा है। और इन्होंने जो है गाने की शुरुआत की थी 40 के सालों में, यस 1942 में मराठी फिल्म में इन्होंने पहली बार के लिए जो है गाना गाया था। और उसके बाद जो है 1945 के बाद इनके जो है हिंदी फिल्मों में गाने का जो सफ़र है वो शुरू हुआ।

0: के सितारे।
1: अभी के लिए आज की शाम को आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं लता जी के गाए हुए गाने के साथ। आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5250620000 है नंबर हमारा, 5250620000 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि लता जी का कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम लता दीदी पर बात कर रहे हैं और इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। 40 के सालों में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वहीं पर साल 50 आते आते जो है इन्होंने इतने बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किया कि क्या कहे। अनिल विश्वास जी, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस डी बर्मन, फिर अन्य बड़े बड़े अपने टाइम के जो कंपोजर्स रहे हैं और फिल्मों की बात करें तो ऐसे ऐसे बेहतरीन फिल्मों के लिए गाने गाए हैं कि क्या कहे। दीदार, बैजुबारा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, देवदास जैसे फिल्मों के लिए और हर एक दशक इनके करियर के लिए जो है बड़ा ही कमाल का रहा है। और वहीं पर अगला गाना जो हम आपके लिए चलाने वाले हैं वो है दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में जो गाना है अजीब दास्तां, 60 के सालों में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का ये जो गाना है वो अपने आप में इतना पॉपुलर है कि क्या कहे। शंकर जयकिशन साहब ने जो है म्यूज़िक को कंपोज किया था और मीना कुमारी जी पर यह गाना पिक्चराइज हुआ था।

60 के सालों में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का ये जो गाना है वो अपने आप में इतना पॉपुलर है कि क्या कहे। शंकर जयकिशन साहब ने जो है म्यूज़िक को कंपोज किया था और मीना कुमारी जी पर ये गाना पिक्चराइज्ड हुआ था।

0: के सितारे।
1: लता जी जो है अपने गायकी में अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, गायकी में अपने योगदान के लिए इन्हें स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलेडी जैसे सम्मानित नामों से इन्हें जाना जाता था। उनका करियर लगभग 8 दशकों से भी ज़्यादा रहा। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने जो है गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। और बचपन ही से संगीत की शिक्षा की अगर बात करें तो लता जी को संगीत का जो संस्कार है बहुत ही छोटी उम्र से ही अपने पिता से मिला था, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया। और कहीं ना कहीं संगीत की जो तालीम है इनके घर ही से शुरू हो गई थी। और महज 13 साल की थी, उसके बाद इनका जो जीवन है काफ़ी संघर्ष भरा रहा। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने जो है गायकी की दुनिया में कदम रखा। और जो है इनके करियर की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग इनके करियर से काफ़ी प्रेरित होते हैं और हर शैली के गाने को इन्होंने अपने करियर के दौरान गाया। अभी के लिए जो गाना हम आपके लिए चलाने वाले हैं वो है मासूम फिल्म का ये सदाबहार तराना, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी।

0: आपके सितारे।
1: चलिए यह है आपके सितारे रेडियो मनोरंजन पर। इस समय आप हमारा साथ दे रहे हैं। देखते ही देखते शाम के 4:46 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा आपके सितारे प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू लता मंगेशकर।

कर जी, लता जी और सरिता जी इस समय कैटरबोन से साथ दे रही है। लिखा है कि एक वैसे तो उनके हर गाने लाजवाब है और अगर हो सके तो अनाड़ी फिल्म का गाना हो जाए। ऑलराइट, मौका मिलेगा तो सरिता जी आपके लिए हम ज़रूर चलाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। विजया जी हमारा साथ दे रही है यहाँ पर वाकवा से, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपके इस सुंदर मैसेज के लिए और गानों को पसंद कर रही है। एंड यहाँ पर मैसेज आया है, वंडरफुल सिलेक्शन, कीप रॉकिंग RM3 रेडियो मनोरंजन। दारेन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लोवेशा, सभी अपादु परिवार जो रोशनुआ से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला लता जी की आवाज़ में आगे ले जाते हैं। खानदान फिल्म का ये तराना चल पड़ा है, ये मुलाकात एक बहाना है। चलिए, हमें तो एक मौका मिलता है यहाँ पर आने का, आप लोगों का साथ देने का, इसी बहाने से आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है।

0: के सितारे।
1: घर फिल्म का ये गाना इतना खूबसूरत है कि क्या कहे, और इसको सुनते सुनते मानो हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, है ना। चलिए अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 50 और 60 का जो दशक है गोल्डन एरा कहलाता है, और इस दशक में लता जी ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं कि क्या, जहाँ पर इन्होंने नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, मदन मोहन जैसे बड़े बड़े कंपोजर्स के काम के साथ काम किया। वहीं पर इन्होंने आवाज़ दी उस टाइम के पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से मधुबाला जी, नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, वाहिदा रहमान, साधना जैसे एक्ट्रेसेस को, और इनकी आवाज़ इन सभी एक्ट्रेसेस पर बड़ी जचती थी। और इनके मशहूर गीत की बात करें तो लिस्ट अपने आप में इतनी लंबी है कि हम क्या कहें। क्लासिकल म्यूज़िक के प्रभाव की बात करें तो लता जी की गायकी में हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक की झलक हमेशा से ही दिखाई दी है, क्योंकि इनके बचपन की जो ट्रेनिंग जो रही है वो कुछ इसी तरह की रही है। और वहीं पर इन्होंने भजन, गज़ल, क्लासिकल बेस्ड कंपोजिशन, देशभक्ति वाले गीत, भक्ति गीत, फोक गाने, सभी तरह के गाने इन्होंने अपने करियर के दौरान गाए हैं और सबका दिल जीता है।
0: आपके सितारे।
1: और इसी गाने के साथ यानी कि सौतन फिल्म का ये गाना चल पड़ा है, जिंदगी प्यार का गीत है। इस गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके सितारे इस प्रोग्राम के सेकंड आवर की ओर। हमारा साथ आप यूं ही देते रहिए, शाम के 5:50 पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर आपके सितारे।

0: के सितारे।
1: चलिए यहाँ पर आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम हम करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर, आप लोग प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हेलो व्हाट्सएप, आपने तो अपना नाम ही नहीं लिखा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं लेकिन अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, तो अपना नाम भी आप जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन है। विजया जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही है कि हो सके तो इस लता जी पर ये जो आपके सितारे प्रोग्राम है इसे अगली बार भी कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि लता जी के गाने ही इतने हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हमें मौका मिला तो अगले मंडे को जो है हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाए लता जी पर ही, जो गाने हम आज नहीं चला पाए उनके तो अगले सप्ताह हम चलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच विजया जी हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। एंड यहाँ पर हमें किसी ने कहा कि हो सके तो कतरा कतरा फिल्म का गाना हो जाए, कतरा कतरा ये गाना हो जाए। इनफैक्ट कतरा कतरा ये जो गाना है इजाज़त फिल्म का है और ये लता जी की आवाज़ में नहीं है, ये आशा जी की आवाज़ में है, तो इसलिए अफसोस हम इसे नहीं चला पाएंगे क्योंकि आज जो है हम लता जी पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और मैसेज हमें मिला है, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। ऑलराइट, हम कोशिश करेंगे इस गाने को चलाने की इस समय। ऑस्ट्रेलिया आफिस जी जो है गाना मांग रही है, अहमद के नाम, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारा साथ दे रहे हैं।

तो थैंक यू सो मच आफिज जी और थैंक यू अहमद जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम से कनेक्टेड है। अभी के लिए लता जी की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये तराना हो जाए। हमने कोशिश की कि कुछ पुराने गाने उनके जोड़े, क्योंकि 8 दशक से भी ज़्यादा इनका करियर रहा है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड फिल्मों का दौर इन्होंने तय किया है। तो हमारी कोशिश है कुछ नए गाने, कुछ पुराने गाने, और इस तरह से जो है लता जी के कुछ बेहतरीन गाने हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। देखते ही देखते शाम के 5:25 हो चुके हैं। ऐसे लता जी के बारे में हम जितनी भी बातें कहें उतनी कम है, और ऐसी कोई बात नहीं है लता जी के बारे में जो उनके फैंस उनके चाहने वाले नहीं जानते हैं। अभी के लिए आप गानों को इन्जॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। लता जी ने अपने टाइम के बड़े बड़े मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ ड्यूएट गाने गाए हैं। रफ़ी साहब हो, मुकेश साहब हो, किशोर दा हो, इनकी जोड़ी जो है बहुत ही पॉपुलर रही है। उनके ड्यूएट्स हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई अन्य जो है भाषाओं में भी इन्होंने गाए हैं, और उसी तरह से उन्होंने अपनी बहन के साथ भी कुछ गाने गाए हैं। जी हाँ, अगर हम आशा जी की बात करें, लता जी और आशा जी, तो उन दोनों का एक गाना है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और आज भी हम कह सकते हैं पॉपुलर है। उमराव जान फिल्म का एक गाना है जो लोग बहुत ही जो है पसंद करते हैं, और यहाँ पर जो है वो गाना हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो हम जो है उसे ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम शामिल यहाँ पर करेंगे। और अभी के लिए जो है इस समय सरिता जी का ट्रोबोन से हमारा साथ दे रही, कह रही कि आप हमें भूल गई। बिल्कुल हम आपको नहीं भूले हैं, आपका जो है गाना ऐसे तो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपके नाम को हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, आपके नाम को हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। और यहाँ पर उमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्यूपिप से, और लिख रही है कि एंजॉयिंग द प्रोग्राम, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए।
0: आपके सितारे।
1: जो गाना हम ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से वो हमें मिल गया है, वो उमराव जान नहीं बल्कि उत्सव फिल्म का तराना है, लता जी और आशा जी की आवाज़ों में, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। और ये गाना खासकर लता जी के

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में बात करें लता जी की। तो लता जी ने काफ़ी अवार्ड्स अपने करियर के दौरान जीते हैं, फिल्म फेयर की ओर से तो काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, और वहीं पर इन्हें 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ था, वहीं पर 1999 में पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था, और साल 2001 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, और वहीं पर इन्हें वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी प्राप्त हुआ था, और उसके अलावा कई अन्य अवार्ड्स इन्हें हासिल हुए हैं, नेशनल अवार्ड भी इन्हें कई बार मिले हैं, परिचय, कोरा कागज़, लेकिन इस फिल्म के गानों के लिए, और वहीं पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो मधुमती इस फिल्म के लिए आ जा रे परदेसी जो 1959 में आई थी इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था, वहीं पर 20 साल बाद कहीं दीप जले कहीं दिल, खानदान फिल्म, तुम ही मेरे मंदिर, जीने की राह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, और हम आपके हैं कौन इस फिल्म में इन्हें स्पेशल अवार्ड मिला था दीदी तेरा देवर दीवाना इस गाने के लिए, और उसके अलावा कई बड़े बड़े अवार्ड्स इन्हें अपने करियर के दौरान प्राप्त हुए हैं।

0: चलिए आपके सितारे ये प्रोग्राम आज आधारित रहा लता जी पर। आज लता जी की जन्मतिथि है। आज ऐसे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कलाकार अपनी कला के जरिए हमेशा जीवित रहता है।
1: आपके सितारे।
0: और लता जी की बात करें तो ये सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर ही नहीं थी, बल्कि इनकी आवाज़ ने भारतीय सिनेमा को एक नया रूप दिया, एक नया आयाम दिया और हर पीढ़ी को कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ से प्रेरित किया है। और आपने भी इतने प्यार से आज के हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वीर ज़ारा फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। और इसी के साथ आपके सितारे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। इस गाने के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को किरण जानकी जी से, और फिर बारी होगी एक भोजपुरी गीत की, और 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो हमेशा ही ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात होगी 6:30 बजे नई सोच और फिर दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। तो चलिए अभी के लिए इस गाने के साथ हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।

0: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा. आज हमने बतिया जा आंचलिक कूपन के बारे में, जिनकर मृत्यु 27 सितंबर 1943 के होल रहा बंदूक के गोली से. कुछ लोग जन्म से महान रहेलनसा, लेकिन कुछ लोग महानता हासिल करेलनसा. आंचलिक कूपन एगो ऐसन ही औरत रलन. उ एगो गिरमिटिया मजदूर रलन और अपन काम करवा साथी लोग के संगे काम करवा लोग के अधिकार के हक में एगो विद्रोह जुटाव में बेलव्यूआगल में भाग लेवत रलन, जब गोली मार के उनकर जान ले लेवल गल और आंचलिक कूपन के नाम मॉरिशन इतिहास में गढ़ गल. और आंचलिक कूपन के दर्दनाक मृत्यु के बाद हर बरिस उनकर श्रद्धांजलि अर्पित करल जला. उनकर एगो मूर्ति बा शहर के पुराना सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंडस्ट्रियल कोर्ट के बगल में, हुआ के प्रांगण में, पोपेनेसी गली पोटरी में. और हर बरिस इनकर प्रतिमा पर 27 सितंबर के महानुभाव लोग माला चढ़ा के उनकरा श्रद्धांजलि देवेलन जा. ये मूर्ति आगे इमिग्रेशन बस अड्डा के सामने अप्रवासी घाट के बगल में पौका बुले में रहल, फिर एक इंडस्ट्रियल कोर्ट के आंगन में अनलगल. कहे कि ई मानल जला कि इनकर सही जगह एगो अदालत के आंगन में ही है. कहे कि उ काम करवा लोग के हक में जो क्रांति चलल ओकर में भाग लेते हुए अपन जान गवाइलन. आंचलिक कूपन सुंदरम पवतन के नाम से जन्म लेले रलन फरवरी 1911 में रिविया जुरांपा गांव में. रिविया जुरांपा गांव में ही उनकर जन्म होल और उबड़ा होइलन. 13 सितंबर 1943 के बेलव्यूआगल के ताबिस्मा में एगो हड़ताल शुरू होल. 17 सितंबर के दू गो काम करवा लोग के प्रतिनिधि हरि प्रसाद राम नारायण और शर्मा जगदम्बी शक्कर मिल मालिक लोग संगे एगो संधि तय करलन सा. बाकी लोग हड़ताल जारी रखलन सा और हिंसा भड़क गल, जोन खातिर पुलिस के पड़ल मामला पर काबू पावे गई. 27 सितंबर के काम करवा लोग बेलव्यूआगल के ताबिस्मा में एगो पूजा के आयोजन करलन सा. जब पुलिस आल्ट देखलन सा कि औरत मर्द लड़का लोग लाठी और हाथ में पत्थर लेके खड़ा होवन सा और हटे के नाम नहीं लेवन सा, तो उ लोग पुलिस पर पत्थर चलावे के भी शुरू कर दिलन सा. जेकर बाद पुलिस के पड़ल गोली चलावे के बंदूक से कितने जना घायल होल और 3 जना के जान गल. उ बखत हुए पर ही 3 जना के जान गल हुए पर और ई में आंचलिक कूपन भी शामिल रह, जिनकर उम्र 32 बरिस के रहल और उ पेट से रलन गर्भवती रलन. ई बलिदान खातिर उनकरा हमेशा याद करल जला. कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद. नमस्ते.
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.

0: शाम के 6 बजे हैं पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। लावाउचे में आज सुबह एक एनटीसी बस और एक लॉरी की टक्कर में लॉरी चालक की मौत, बस में सवार 20 लोगों में से 6 अब भी साज अस्पताल में भर्ती। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। 2025 में चीनी की बिक्री से 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी। थाईलैंड में बाढ़ से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। राजधानी बैंकॉक के कई इलाकों में पानी भरने के बाद करीब 6,000 लोगों ने राहत केंद्रों में शरण ली। सुरों की दुनिया में अमिट छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर की आज जयंती। दशकों तक उनके गीत हर पीढ़ी की यादों का हिस्सा बने। अब समाचार विस्तार से। आज के समाचारों की शुरुआत लावाउचे में हुए गंभीर सड़क हादसे के साथ। सुबह एनटीसी की एक बस और एक लॉरी की टक्कर में लॉरी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे, उनमें से 6 अभी भी फ्लाक के से अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में भर्ती हैं। टक्कर किन हालात में हुई इसकी जांच की जा रही है। विस्तार कोयल सितल और गीता सुनारान के साथ।
1: सुबह के 7:45 बजे रिजल की ओर जाने वाली एनटीसी की लाइन 222 की बस एक लॉरी से जा टकराई। बस में 20 लोग सवार थे, जिनमें कई छात्र भी थे। हादसे में लॉरी चालक की मौत हो गई। वे 70 साल के थे। आपात सेवाएं सक्रिय हुई और घायलों को फ्लाक के सनिरु जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया।
2: Mon pompe ici vers les 6h20. Mon pays après, au fait, mon nez se

0: manger. Après un petit moment, il y a un pack de l'année pour que nous nous dévirions. Le docteur dit qu'il faut mettre parce que quand je suis petit, à un moment, je perds connaissance.
1: अस्पताल में घायल हुए 6 लोगों को भर्ती किया गया और 14 को जरूरी इलाज के बाद घर जाने दिया गया। अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर डॉक्टर ताराचंद सिनुत कहते हैं,
2: il y a à peu près 21 personnes qui viennent atteindre l'hôpital aujourd'hui et il y en a 6 parmi là-dedans qui

0: aussi dans trois élèves qui ont eu une voie de cet accident-là. Il y a un élève 16 ans, il est à l'école secondaire. Et nous avons deux élèves tertiaires qui sont à l'examen aujourd'hui.
1: दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।
2: उधर एनटीसी के डिपो में आज सुबह कर्मचारियों ने घोषलो किया, इसका असर राजधानी जाने वाली कुछ बस सेवाओं पर पड़ा। खासकर कथोबोन क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हुई। विवाद नए काम के समय को लेकर है, जिसमें ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है। परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद ने डिपो पहुंचकर मैनेजमेंट और कर्मचारियों से बात की। उनके मुताबिक उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि कल से बस सेवा सामान्य हो जाएगी। चीनी की बिक्री से 2025 में 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी, लेकिन गन्ना उद्योग के सामने जमीन और मजदूरों का सवाल अभी भी बना हुआ है। पोटवी में आज मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। पदमुक्त अध्यक्ष निकोला मेघो ने बागास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग की और पहले गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाली करीब 10,000 हेक्टेयर खाली जमीन को फिर खेती में लाने की अपील की। मंत्री अरविंद बुलेल के मुताबिक गन्ना क्षेत्र में काम करने के लिए 600 विदेशी मजदूर दिसंबर में मॉरिशस आएंगे। काविंता पिसाओ, गीता सुनारान।
3: मॉरिशस का गन्ना उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक संघों की कमी और गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कमी शामिल है। शुगर सिंडिकेट के वर्तमान अध्यक्ष निकोला मेघो ने बताया कि 2025 की फसल के लिए उत्पादकों को प्रति टन चीनी 24,095 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल के लिए ये कीमत 27,478 रुपए थी। 2025 में चीनी की बिक्री से होने वाली आय 10.4 बिलियन रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 11 बिलियन रुपए थी। अब खास शक्कर का हिस्सा कुल उत्पादन का 60% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 54% था। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने बगास के लिए दिए जाने वाले दाम की समीक्षा की मांग की है। साथ ही कुछ आयात की जाने वाली चीनी से स्थानीय बाजार को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने की भी मांग की गई। निकोला मेघो कहते हैं, बायोमास के दाम पर फिर से गौर करना होगा। आज बागास का दाम 3.50 रुपए प्रति किलोवाट है। मंत्री ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की तो दाम भी बढ़ना चाहिए, इससे अन्य सेक्टर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे स्थानीय बायोमास की पैदावार करने के लिए।
4: Qui aussi incitera d'autres secteurs à planter, par exemple, pour faire de la biomasse locale.
3: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कहा कि बायोमास गन्ना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार बायोमास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग पर अध्ययन करेगी।
5: Nous parlons de ce qu'on appelle production de l'électricité à partir de biomasse.
3: बायोमास से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 3.50 रुपए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसे बढ़ाना होगा, इससे बायोमास आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्पादन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2025 में 33,805 हेक्टेयर जमीन से गन्ने की कटाई की गई और कुल 2,20,305 टन चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आज भी खाली है। महासभा के बाद नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सचिन सुकना को नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इससे पहले शुगर सिंडिकेट के उपाध्यक्ष के पद पर थे।
2: दुनिया भर में पेय पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है और बल्कि 2025 तीन दशकों से ज़्यादा अवधि के लिए सबसे सूखा साल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं। उदाहरण के लिए माहोवाकवा को ही ले, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% तक का चिन

0: चिंताजनक स्तर पर पहुंच सकता है। विस्तार अगली रिपोर्ट में।
1: नदियों में पानी के बहाव को लेकर 2025 पिछले 35 सालों में दुनिया भर में सबसे सूखे सालों में से एक रहा। इस पर विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चिंताजनक है। संगठन की महासचिव सेलेस सोलो कहती हैं, 2025 पिछले 35 सालों में नदियों में पानी के बहाव को लेकर सबसे सूखा साल रहा। पिछले 7 सालों में असामान्य रूप से बारिश और जल बहाव दर्ज किया गया। इस प्रकार की विनाशकारी आपदाएं अभी तक देशों और अर्थनीतियों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। परिणाम स्वरूप नदियों में पानी का बहाव कम हो रहा है, जमीन के नीचे भी पानी का स्तर गिर रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। WMO के हाइड्रोलॉजी निदेशक वेन जेनकिंसन कहते हैं, लगातार 7 सालों से दुनिया में नदियों में जल प्रवाह कम हुआ है। ये 1991 से 2020 के वर्षों के मुकाबले बड़ी गिरावट है। पिछले 4 नियमित सालों से दुनिया के कई बड़े ग्लेशियर पिघल कर गिरे हैं। आज धरती पर मीठा पानी कम हो गया है। पिछले 5 सालों के दौरान अफ्रीकी और एशियाई देश जल आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मॉरिशस में काफी समय से भारी बारिश न पड़ने के कारण पहले से ही मुश्किल हालात और बिगड़ रहे हैं। देश का मुख्य जलाशय माहोबाक्वा अभी अपनी क्षमता का मात्र 37% ही भरा है। स्थिति को देखते हुए पिछले जून महीने से CWA देश के कई इलाकों में रोजाना पानी की कटौतियां कर रही है। वाटर रिसोर्सेज यूनिट के निदेशक लोमिश जगू कहते हैं, अभी माहोबाक्वा का जल स्तर 37.6% के आसपास है। निकोलियर करीब 44% भरा है, जबकि कुछ अन्य जलाशयों में जल स्तर करीब 80% पर है। इस साल सेंट्रल प्लेटो के इलाकों में बारिश बहुत कम रही। ये दर 1998-1999 के बीच पड़े सूखे की स्थिति के आसपास है। अगले नवंबर महीने तक माहोबाक्वा का जल स्तर करीब 20% का होगा, जबकि दिसंबर तक ये 11% तक गिर सकता है। पाबंदियों के अलावा अब संबद्ध अधिकारी नए उपाय लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लोमिश जगू कहते हैं, CWA लाविविया पापाय में एक कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर स्थापित करने जा रही है। इससे कुछ प्रभावित इलाकों तक पानी सप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही एक ड्रिलिंग अभियान शुरू किया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण उपाय के तहत हमने मौलोंग जलाशय को माहोबाक्वा की प्रणाली के साथ जोड़ा है। पानी एक कीमती संसाधन है, इसे बर्बाद न होने देना सभी की जिम्मेदारी है।
0: क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड ने 100% रिसाइकल की जा सकने वाली पेट बोतलों की नई उत्पादन लाइन में 300 मिलियन रुपए से ज्यादा निवेश किया है। आज इसकी लॉन्चिंग पर मंत्री राजेश भगवान ने बताया कि सरकार नए नियम तैयार कर रही है, जिसके तहत उत्पादकों को अपने इस्तेमाल हो चुके उत्पादों को इकट्ठा करने और रिसाइकल करने का खर्च उठाना होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के मंत्री आदिल आमिया मियां के मुताबिक तैयार किया जा रहा इंडस्ट्री बिल उद्योगों को विविधता बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा। माधवी जगन्नाथ, अशिता रघु।
2: बेल्ट्रोज में क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड की नई उत्पादन इकाई पिछले कुछ महीनों से काम कर रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस उत्पादन लाइन में 30 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यहां 100% रिसाइकल किए जा सकने वाले PET बोतलों का उत्पादन किया जाता है। PET एक हल्का और मजबूत प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल पेय पदार्थों की बोतलें और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग बनाने के लिए किया जाता है। क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इनिगो डे प्राडो कहते हैं, प्रयोग किए गए बोतलों को इकट्ठा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं, धोकर फिर से रिसाइकल करके प्रयोग किया जाता है। डायट पेप्सी के बोतलों के लिए फिलहाल ऐसा किया जा रहा है, अन्य पदार्थों के लिए भी आने वाले वर्षों में ऐसा करेंगे। पॉलीपैट के साथ मिलकर बोतलों को जमा किया जाता है। इस नई व्यवस्था से हर बोतल के उत्पादन में बिजली की खपत 56% तक कम होती है और पानी के इस्तेमाल को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। लीना सुहाई सुंटू कहती हैं, एक नए CIP सिस्टम में निवेश किया है। ये मशीन हमें पानी और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग को कम करने में मदद देती है। सभी कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे मशीन का प्रयोग कर सके। इस नई उत्पादन

0: इकाई के लॉन्चिंग समारोह के दौरान पर्यावरण मंत्री ने नए नियम तैयार किए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्पादकों की विस्तृत जिम्मेदारी की व्यवस्था लागू करना है जो प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे के सिद्धांत पर आधारित होगी। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं पैकेजिंग के उत्पादकों को अपने बोतलों के संचालन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और रिसाइकल किया जा रहा है। एक आधुनिक सिस्टम डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि हर मॉरिशन इन्हें जमा करने में योगदान दे। वही मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि उद्योग क्षेत्र से संबंधित नए विधेयक का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तकनीकी बदलावों के साथ खुद को ढालने में मदद करना है, साथ ही उसकी उत्पादकता में सुधार करना है। आज कामगारों की कमी, लागत में बढ़ोतरी समस्याएं हैं। मशीन में निवेश करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।
1: Peut évoluer à Maurice, il peut évoluer d'une façon pour nous adapter nous à nos défis économiques.
0: Quality Beverages Limited ne 1991 में मॉरिशस में PET पैकेजिंग की शुरुआत की थी। पैकेजिंग की ये नई उत्पादन लाइन कंपनी के विकास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये नवाचार तथा अधिक टिकाऊ उत्पादन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: तो विवरण गीता सुनारान का रहा। दिखने में छोटा और प्यारा, हाथ में दबाने पर तनाव कम करने वाला खिलौना, लेकिन स्क्वीजी डंपलिंग बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई देशों में इसे बाजार से वापस मंगाया जा रहा है, जबकि मॉरिशस में ये अब भी खुले तौर पर बिक रहा है। आखिर ये खिलौना यहाँ की दुकानों तक कैसे पहुँचा? हमारी रिपोर्ट यासिन डैन महमूद कि इस रिपोर्ट में ज्यादा खुलासा। इन दिनों फैशन में आया एक नया खिलौना, कई रंगों और कई आकारों वाला स्क्वीजी डंपलिंग, कुछ में ग्लिटर भी हैं और कुछ बिना ग्लिटर के। इनकी ऑनलाइन मांग लगातार बढ़ रही है। ये खिलौना दुकानों और कुछ फेरी वालों के पास भी हैं। देखने में बेहद प्यारा ये खिलौना अपने अंदर एक संभावित खतरा छिपाए हुए है। कई देशों, खासकर इंग्लैंड और फ्रांस में, कुछ मॉडलों को अधिकारियों ने वापस करने का आदेश दिया क्योंकि उनमें संभावित कैंसरकारी पदार्थ पाए गए। इसके अलावा कुछ मामलों में खिलौने के फटने और अंदर मौजूद पदार्थ के त्वचा से संपर्क में आने से जलन की भी शिकायत की गई। मेबर्ग में ऐसे ही एक मामला सामने आया। मॉरिशस में खिलौनों की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लागू हैं। मॉरिशस स्टैंडर्ड्स ब्यूरो सुरक्षा से जुड़े मानकों के पालन को सुनिश्चित कराता है। एमएसबी की निदेशिका रोमा पासा ने कहा खिलौने की जांच की जाती है ये देखने के लिए कि उससे बच्चे को खतरा तो नहीं, उपकरण ढीले तो नहीं, बच्चे उससे कहीं निकल न जाए, कपड़े में कहीं जल्दी से आग न लग जाए। रासायनिक पदार्थ की भी जांच की जाती है जहां रंगों का इस्तेमाल होता है जिसमें लेड हो सकते हैं। यदि जांच के नतीजे संतोषजनक नहीं तो एमएसबी उत्पादों की क्लियरेंस के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये खिलौना मॉरिशस के बाजार तक पहुंचा कैसे? खिलौने नियंत्रित होते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन खरीदे जाए सीमित संख्या में, तब व्यक्ति खुद इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। यदि संख्या 10 से ज्यादा हो तो कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट ये सुनिश्चित करेगा कि जांच का प्रमाण हो। एक ऐसी खामी जिसका फायदा कुछ विक्रेता ऑनलाइन ऑर्डर और छोटी मात्रा में किए जाने वाले आयात के माध्यम से उठा सकते हैं, इसीलिए एमएसबी ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील करता है। खासकर ऑनलाइन खरीदारी के समय जिनके उत्पादों पर जरूरी नहीं कि वही सुरक्षा जांच लागू हुई हो। सेहत की बात हो तो शरीर के साथ मन का ख्याल भी जरूरी है, यही आयुर्वेद की सोच है। इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गुरुवार 17 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में चर्चा हुई। आयोजन 23 सितंबर को मनाए जाने वाले आयुर्वेद

0: आयुर्वेद दिवस 2026 का हिस्सा था। इस मौके पर आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी देने वाले आयुर्वेदा कॉर्नर की भी शुरुआत की गई। रिपोर्ट प्रियंका हरि की, विवरण अशिता रघु का।
1: एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बनाए हुए है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन पर जोर देता आया है। एक पारंपरिक ज्ञान जिसमें आज की युवा पीढ़ी भी दिलचस्पी ले रही है। केशव पगाव कहते
2: हैं,
1: हमारे बड़े लोग व पूर्वज जिन जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे, इनकी उपचारात्मक तत्वों पर ध्यान नहीं देते थे, पर आज एक मेडिकल विद्यार्थी होने के नाते इनका एहसास हो रहा है और आयुर्वेद डॉक्टर की पढ़ाई का एक हिस्सा है जो बहुत आवश्यक है। नोविना चिनाय कहते
3: हैं
1: कि आयुर्वेद के माध्यम से इस क्षेत्र में ज्यादा जान पाएंगे और इस तरह प्राकृतिक उपचार को अपना पाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा।
4: रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन आयुर्वेदा।
1: आयुर्वेद दिवस 2026 के मौके पर यूनिवर्सिटी मॉरिशस में आयुर्वेद चर्चा के केंद्र में रही।
5: इट्स अ वेरी रिच ट्रेडिशन।
1: आयुर्वेद फॉर अ हेल्दियर टुमारो विषय पर आधे दिन का एक सिंपोजियम आयोजित किया गया जिसमें विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और इस क्षेत्र के पेशेवर शामिल हुए।
6: अंडर दैट नो आयुर्वेद प्रोग्राम
1: मॉरिशस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद चेयर डॉक्टर पूजा सबरवाल कहती हैं, लक्ष्य है विद्यार्थियों और स्टाफ को अंतर विषयक अनुसंधान की संभावनाओं के बारे में बताना और ये दिखाना कि विभिन्न विषय अपने अपने अध्ययन के क्षेत्र में रहते हुए आयुर्वेद में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों और आयुर्वेद के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद कॉर्नर का भी उद्घाटन किया गया। ये एक ऐसा स्थान है जहां आयुर्वेद के बारे में लोगों को अधिक जानकारी दी जाएगी और युवाओं को इस पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तर्शरी मंत्री कविराज सुको कहते
5: हैं,
1: युवकों को समझने में आसानी होगी कि कैसे पारंपरिक उपचार के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब हम पहले करते थे जो अब नहीं करते, जैसे पूर्व में हर सप्ताह या बीमार पड़ने पर सर में तेल मालिश करते थे, दर्द होने पर आयापना के पत्ते पीते थे। इन सब में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं,
7: India's approach to
1: भारत का आयुर्वेद के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और विकसित करना है तथा वैज्ञानिक परिणामों, अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से इसे मजबूत बनाना है। इसी सोच और प्रयास के तहत आयुर्वेद से संबंधित ये सूचना मंच शुरू किया गया है। परंपरा और आधुनिकता के बीच आयुर्वेद का ये ज्ञान आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहेगा और भविष्य की बेहतर सेहत की ओर ध्यान केंद्रित करेगा।
0: विदेश की खबरों में, ब्रिटेन में अमेरिकी सेना के इस्तेमाल वाले रदरफोर्ड अड्डे के पास 3 संदिग्ध वाहन्स मिलने के बाद 5 लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस को वाहनों में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली है जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के 85 घरों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। आतंकवाद विरोधी अधिकारी भी यही जांच रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश का ईरान से कोई संबंध है। ऐसा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है जिसके तहत लड़ाई रोकने और 7 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात थी। फिर भी ट्रंप को इस सप्ताह नई बातचीत की उम्मीद है। ईरान का कहना है कि जलमार्ग खोलने से पहले उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिलहाल कोई नया समझौता नहीं हुआ है। मेक्सिको के प्रशांत तट पर तूफान पोलो का खतरा बना हुआ है। उधर थाईलैंड की बाढ़ में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि नेपाल और भारत में तेज बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने कई जाने ली हैं। 4 देशों के हालात पर हमारी रिपोर्ट आस्था गोबिंद के साथ।
8: मेक्सिको के प्रशांत तट की ओर तूफान पोलो अब कैटेगरी 3 पर है। इससे पहले

0: को श्रेणी 5 तक पहुंच गया था। गलिस्को में बाढ़ का पानी एक घर को बहा ले गया, 2 बच्चों की मौत हुई और उनके माता पिता लापता हैं। तूफान के सोमवार रात कैलिफोर्निया पर पहुंचने का अनुमान है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटाया गया है। थाईलैंड में 16 सितंबर से आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। राजधानी बैंकॉक में किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई इलाके पानी में डूबे हैं। देश भर में 5,80,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। बैंकॉक में करीब 6,000 लोगों ने राहत केंद्रों में शरण ली। कुछ पूर्वी इलाकों में जलाशय भरने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। नेपाल में 4 दिनों की तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग अब भी लापता है। भूस्खलन ने कई सड़कें बंद कर दी और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बचाव का काम चुनौती बना हुआ है। देश अभी अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से उबर नहीं पाया है और अब बारिश ने फिर मुश्किलें बढ़ा दी है। पड़ोसी भारत के उत्तर प्रदेश में 3 दिन की भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोगों की मौत हुई है। 46 लोग घायल हैं और 1,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह स्कूल बंद किए गए हैं और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ओडिशा में भी 75,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो सकती है, जबकि दक्षिणी कर्नाटका के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बहुत भारी बारिश हो सकती है।
1: मेरी आवाज ही पहचान है, लता मंगेशकर की आवाज के लिए शायद इससे सुंदर पंक्ति कोई नहीं। कभी वे माँ की लोहड़ी जैसी सुकून देती हैं, कभी प्यार की याद बनकर दिल में ठहर जाती हैं। आज उनकी जयंती पर उन गीतों को फिर से सुनने का मन होता है जिन्हें हम बरसों से जानते हैं, फिर भी हर बार उनमें कुछ नया महसूस करते हैं। उनके आवाज़ से जुड़ी यादों पर ये खास रिपोर्ट सुमेहरा अकबर अली के साथ।
2: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर भारत की वो अनमोल रत्न हैं जिनकी मधुर आवाज़ से वो जिंदा हैं। उनकी आवाज़ ने मोहब्बत को तरन्नुम दिया, प्यार को अंदाज सिखाया, प्रेम की भावनाएं जताई और कला को जान दी। 28 सितंबर 1929 को लता जी की पैदाइश इंदौर में हुई थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शिवांति हरिदास अलाद के 5 बच्चों में लता दीदी सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए अपने पहले गाने को रिकॉर्ड किया था। 1946 में आपकी सेवा में उनका पहला हिंदी गाना आया था, लेकिन 1949 में महल फिल्म का आएगा आने वाला गाना उनकी शोहरत का बाइस बना। शास्त्रीय संगीत से भजन, रोमांटिक गीतों और देशभक्ति तरानों तक लता जी ने हिंदी सिनेमा उद्योग के बेहतर से बेहतरीन मौसीकारों के साथ काम किया।

0: 1963 में लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम किया। ये गाना भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखा गया था जो 1962 की जंग में शहीद हो गए थे। 1997 में ए आर रहमान ने माँ तुझे सलाम की कंपोजिंग की थी जिसने उस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये गीत रचित किया गया था। लता मंगेशकर को यूं तो सभी प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिले लेकिन उनकी कला और निराली आवाज से उनके लिए खास सम्मान दिए जाने लगे। वो पहली भारतीय कलाकार रही जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया। 30 से ज्यादा भाषाओं में उनके हजारों गाने हैं। भारत के अलावा कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में वो चल बसी लेकिन उनके हर एक गाने के जरिए वो हर दिल में बाहयात है।
1: खबरों के अंत में चलिए सुनते हैं मौसम की रिपोर्ट।
2: पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह कर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि पूर्व

एवं ऊंचाइयों पर आज रात के दौरान थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना होगा। कल सुबह और दोपहर में भी पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के दौरान हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त 6:07 पर हुआ, कल सूर्योदय 5:53 पर।

0: 6:29 हो चुके हैं। समाचार बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है लीडोवी के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। ओकुले में 51 साल के 51-year-old श्री शास्त्री गंगना जो बुडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगना के मकान औंखे कातों ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लानमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबॉ में 69 साल के 69-year-old श्री मुनीलाल डुला जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे नेश्वर डुला के मकान नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबॉ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाले दुप्रैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Nee so. सोमवार 28 सितंबर शाम के 6:30 बज चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूँ सुमी, हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जी हाँ, एक बार फिर हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और नई सोच इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। अभी से लेकर 7 बजे तक नई सोच ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। चलिए, सोमवार का दिन है और सितंबर महीना लगभग समाप्त होने को है। अक्टूबर महीने में आने वाले 2 दिनों में हम कदम रखने वाले हैं। समय इतने जल्दी बीत रहा है कि क्या कहें। देखते ही देखते इस साल के 9 महीने जो है ख़त्म होने को चले, और चलिए हम भी समय को बिल्कुल नहीं गंवाएंगे और नई सोच इस प्रोग्राम में खूबसूरत गाने तराने आपके लिए चलाएंगे। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यादें फिल्म के इस टाइटल ट्रैक के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
5: You're listening to RM3 Radio Mana।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: RM3 Radio.
1: यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है यादों से भरी हुई है। हम आए दिन नई नई यादें बनाते रहते हैं, नए किस्से होते हैं, नई कहानियाँ होती है, नई उम्मीदें होते हैं, नए सपने होते हैं, और वहीं पर इन्हीं के चलते हमारे अपने अनुभव भी होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस भी होते हैं, जिनके चलते हमारी ज़िंदगी और

और भी दिन ब दिन सुंदर होती जाती है, खूबसूरत होती जाती है। और ज़िंदगी कहते हैं एक गीत है, इसे गुनगुनाते रहना चाहिए और बस गुनगुनाते हुए हमारा साथ देते रहिए रेडियो मनोरंजन पर नई सोच इस प्रोग्राम में।

0: नहीं सो।
1: यकीनन जिंदगी के ताल से ताल मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। कहते ना कि जिंदगी एक गीत है, वाकई में इसे गुनगुना ले। जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके चलते हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अच्छा बुरा जैसे भी है, ज़िंदगी के हर एक पल को खूब जीना चाहिए, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत है कि ये ज़िंदगी हमें मिली है। और ज़िंदगी के हर एक पल का सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन के ये जो प्रेशियस टाइम होते हैं ना, इसे हम बेकार की चीज़ों में गवा देते हैं, बेकार की बातों में गवा देते हैं और कल को अफसोस करते रह जाते हैं। तो इसलिए अफसोस न करें, या फिर कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें अफसोस हो, है ना। चलिए, नई सोच इस प्रोग्राम में आपका साथ हमें मिल रहा है। और अब जो अगला तराना हम आपके लिए लाए हैं, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ये गाना है, और जतिन जी की आवाज़ में। जी हाँ, जतिन ललित म्यूज़िक कंपोज़र जो है, उनमें से एक जतिन जो है कंपोज़र, ये गाना उनकी आवाज़ में है। आप सभी के नाम

जी हाँ, जिंदगी में कभी कभार अपने रूट जाते हैं, बात नहीं होती है, दूर चले जाते हैं, और जब अपने रूटते हैं तो मानो जिंदगी भी अपने आप में रूट जाती है। इसलिए अगर आपसे भी कोई रूठा है, उनको मनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोशिश ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला आएगा तो बात हो जाएगी। हम एक दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं कि वो आएगा तो हम बात करेंगे, मैं क्यों जाऊँ, और ऐसे में जो है कितना ज़िंदगी का जो अनमोल, कितने जो क्षण होते हैं उसे हम गंवा देते हैं, है ना। तो और ऐसे में रिश्तों में और भी दूरियाँ आ जाती है, और जब अपने ही साथ ना हो तो ज़िंदगी का हर पल मानो अधूरा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर नई सोच इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, खूबसूरत गाने यहाँ पर आपके लिए हम चला रहे हैं, और अब बारी है इस अगले तराने की। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये जो गाना है, आप सबके नाम हम करते हैं।

जाने मन। और दोस्तों इसी के साथ जो है नई सोच ये सेगमेंट खत्म होने को चला और 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। तो आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहे ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: Upcentered 95.5, North, South 95.6, 95.6, East, West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: मंडे 28th ऑफ सितंबर घड़ी मिला लीजिए ठीक 7 बज रहे हैं
4: दिलों की आवाज़

0: दिलों की आवाज
1: मंडे 28th ऑफ सितंबर शाम के 7:05 रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। मैं हूं सुमी और चलिए दिलों की आवाज इस प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। देर किस बात की है, जल्दी-जल्दी आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं। 4028070 है नंबर हमारा। यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। अभी से लेकर रात के 9 बजे तक चलने वाला है दिलों की आवाज ये प्रोग्राम, तो आप अपने डेडिकेशंस हम तक पहुंचाइए। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी आने की। बस आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज है 28th ऑफ सितंबर। आज लता मंगेशकर जी की जन्मतिथि है। और चलिए आप अगर कोई गाना उनका सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम।

0: खेलों की आवाज की
1: आवाज। जी हाँ, अफसाना प्यार का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे और यकीनन 90s के गाने सुनना पसंद करते हैं या कोई रोमांटिक तराना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज। यस, अच्छा लगता है ना जब किसी को हम अपने दिल की बात कह पाते हैं, अपने दिल के सारे जज्बात कह पाते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि बिना कहे सामने वाला हमारी सारी बात समझ जाए। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो आप वाकई में बहुत लकी है, बहुत खुशकिस्मत है और ऐसे लोगों को बनाए रखना चाहिए। कभी कभार हम अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से ऐसे अच्छे लोगों को खो देते हैं और फिर अफसोस करते रह जाते हैं। चलिए अभी के लिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं, आपके डेडिकेशंस भी थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे और ये तराना आप सभी के नाम चल पड़े।
2: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर 7:30 बज चुके हैं। इस समय हमारे टिकटॉक पर लाइव भी है, बहुत सारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं और ऐसे में बारी है आपके डेडिकेशंस की। भूलिएगा नहीं, आप अपने डेडिकेशंस आप तक पहुँचा सकते हैं। और अब बारी है इस अगले गाने की और अगला गाना जो है हमारे सभी लवली फॉलोअर्स के नाम हम करते हैं, साथ ही हमारे तमाम लिसनर्स के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाकवा रंगभूमि ड्रामा एकेडमी है, नमस्ते आपको। हाय निशा, कैसी है आप? सुबह जी आपका स्वागत हम करते हैं। रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन हो, आप हमेशा जो है हमारा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। प्रेमिला जी हेलो, कैसी है आप? हाय रेखा रामा जी, एंड नमस्कार सुमी, ये यूज़र है 22808, कैसे हैं आप? और चलिए हमारे इस लाइव को लाइक करते रहिए, हमारे इस पेज को आप फॉलो ज़रूर कीजिए। और इस समय जो है वाकवा से सुदेवी जी हमारा साथ दे रही है। गुड इवनिंग सुदेवी जी, आपको भी थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द प्रोग्राम। अगला गाना आपकी ट्रियोले की दीदी लालिता के नाम, वी हैव कुशल फैमिली, देन वी हैव दीदी सुनीता देवीना मालिंगा से आपका पूरा परिवार हमारा साथ दे रहा है। वी हैव कृषय कृष्णी प्रणीता सभी रामरतन परिवार के नाम अगला तराना, हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा अगर हो सके तो जुदाई फिल्म का गाना हो जाए, तो चलिए जुदाई फिल्म का गाना आपके नाम और हमारे सभी सुनने वालों के नाम भी।

0: खुशियों की आवाज की आवाज।
1: सिले जुदाई फिल्म का ये तराना भी आप सुन रहे थे अलका जी और कुमार शानू जी की, नहीं अलका जी और अभिजीत जी की आवाज में। और चलिए यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज ये प्रोग्राम चलेगा। और अगला जो तराना है आशा जी की आवाज, आशा फिल्म से लता जी की आवाज में। जी हाँ, ये गाना शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, वेदना जी की ओर से ये गाना हम डेडिकेट करते हैं सभी के नाम। देन वी हैव वीना, जेवीना, विराज, कमशन, कठरबोन से यादना भी हमारे साथ जुड़ी है, संजना तोताराम जी, निज़ाम बहादुर, शवि, ये गाना आपके लिए भी होगा, काफ़ी दिनों बाद आप हमारा साथ दे रही है। देन वी हैव गौतम और रियल न्यूज़ की ओर से ये गाना शीतल के नाम, जो इस समय मॉरिशस में है, थैंक यू सो मच। एंड यही गाना सूद जी आपके लिए भी हम करते हैं। और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए ये गाना चल पड़ा। और ऐसे आज लता जी का जन्मदिन है, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहते ना एक कलाकार अपनी कला के ज़रिए हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रहता है। तो चलिए लता जी के गाए हुए गाने यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। तो लता जी का कोई खूबसूरत सा गाना आप भी सुनना चाहते हैं तो बेशक साथ दीजिए हमारा ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज़।

0: खुशियों की आवाज।
1: जी हाँ, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। आशा फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना, और आशा ये जो फिल्म है ये काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। रीना रॉय इस फिल्म में नजर आई थी और इस फिल्म के गाने बड़े लाजवाब है। और चले, अभी के लिए गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। सचिन जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। सचिन जी, आपने जो गाना मांगा है शायद आपने या तो फिल्म का नाम ठीक से नहीं लिखा या पता नहीं हमें गाना नहीं मिल रहा है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट दोबारा भेजें तो हम चलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस वक्त जेवीना जी हमारा साथ दे रही है। वी हैव दिनेश महातो जो नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीला की ओर से अगला गाना जाता है असरिया के नाम। देन वी हैव खियाना। करुणा जी भी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा जी नमस्कार, आपको भी, आपका भी स्वागत हम करते हैं। मनीष आचार्य जी आपका भी वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। देन रुकैया जी हैप्पी बर्थडे विश कर रही है मालिका को। मालिका आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे सभी कॉपेन परिवार की ओर से जो रेजवी से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बर्थडे बहुत खास होता है और अपनों के साथ मनाने से जो खुशियां है और भी बढ़ जाती हैं। तो चलिए इसी खुशियों के बीच इस गाने को हम जोड़ते हैं। कल की आवाज़ फिल्म का ये तराना है, आशा जी और कुमार सानू जी की आवाज़ होगी।

0: तो चलिए कल की आवाज़ फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा तराना भी आप सुन रहे थे। हमारे जितने भी सुनने वाले जितने भी फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे, दिलों की आवाज़ ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें पुराने गाने हम नहीं चलाते हैं, 90s के गाने चलते हैं, कुछ नए रोमांटिक तराने चलते हैं। तो अगर कोई गाना आप कोई रोमांटिक सा तराना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है।
1: आवाज़
0: चले इस समय एंजल ऐश हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है अनमोल, गिरीश, आदर्श, वेंडी के नाम, पूरा परिवार साथ में, वी हैव वेद एंड दिनन एंड हंस भी हमारा साथ दे रही है, सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिस एंजल की ओर से गाना जाता है, सुभाष और सुनील के नाम, राजेश जदू जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, वी हैव कवि किशन, वी हैव कवि शिरीष, देन वी हैव सुखविंदर सिंह जी, रुकैया जी आपका भी वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, रॉकी है, दीपक सिंह जी है, और यहाँ पर सभी इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। मन फिल्म का ये टाइटल ट्रैक दीपशिका आपके नाम हम करते हैं। एंड चलिए यहाँ पर सिमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लंदन से हमें सुन रही है। मन फिल्म का ये गाना यहाँ पर चल पड़ा है उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी की आवाज़ों में।

0: की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: चलिए ये है दिलों की आवाज़ रेडियो मनोरंजन पर, और देखते ही देखते हमारा फर्स्ट आवर खत्म होने को चला है और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं इन द सेकंड आवर ऑफ योर दिलों की आवाज़। और अगला जो तराना है चांद का टुकड़ा फिल्म का ये गाना होगा लता जी की आवाज़ में, और गाना जाता है नीलिमा जी आपके नाम हमेशा की तरह आज भी आप हमारा साथ दे रही हैं। एंड बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स और बहुत सारे हमारे लिसनर्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मैसेजेस हमें टिकटॉक पर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर भी मैसेज हमें मिल रहे हैं ऑन 5250-6200 पर। और चलिए गाने की ओर बढ़ते हैं। सुदेवी जी गाना आपके नाम आपकी ओर से आपके पति मनोज के लिए, साथ में दिजेश है और आपकी बेटी है दीक्षा, दिनेश गोपी है, सुनील ठाकुर है, सिमी जो इस समय लंदन से हमारा साथ दे रही है, गाना चाहता है इनकी ओर से रोजबल के सभी कोंदिया परिवार के नाम। देन वी हैव अंश, इंदु, स्वीटी जो बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं और साथ ही हमें टिकटॉक पर लाइव भी देख रहे हैं। उज्ज्वल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे सभी लाइफ का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ पर गाना जाता है शर्मिला बुधन जी आपके नाम भी, रफ़ी सिंगर है। इंदिरा जी की ओर से गाना जाता है राजेश उगौ के नाम, रोशनी देव, विमला देवी, सुनील जी सभी बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए कभी कभार कुछ मैसेजेस जो हैं हमसे मिस भी हो जाते हैं, तो अगर आपका मैसेज हमने नहीं पढ़ा है तो आप हमें दोबारा भेजिए, हम उसे हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल करेंगे।

0: एक्चुअली लता जी की आवाज में ये था बड़ा ही खूबसूरत सा तराना टेकन फ्रॉम द मूवी चांद का टुकड़ा और इस फिल्म में श्रीदेवी नजर आई थी साथ में सलमान खान थे। तो चलिए ऐसा ही कोई खूबसूरत सा गाना आप किसी के नाम करना चाहते हैं आपका स्वागत है आपका वेलकम है और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले तराने की ओर। मैंने प्यार किया फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होगा लता जी की आवाज में और आज लता जी जो है उनका बर्थडे है। आज ऐसे तो वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके गाए हुए खूबसूरत गानों के ज़रिए हम उन्हें बेशक याद ज़रूर कर रहे हैं। तो मैंने प्यार किया फिल्म का ये जो तराना है ये लता जी और एसपी बालसुब्रमण्यम जी की आवाज़ों में है। गाना जाता है फरहीद जी की ओर से, रेणुका आपके नाम, देन वी हैव अजय, नाहिद, रोहन, शी बर्टन जो हमारे साथ जुड़ी है, फ्लाक से लक्ष्मी जी भी हमारा साथ दे रही है, कह रही कि अगला गाना इनकी ओर से सभी सुनने वालों के नाम हो जाए। आशा जी आप हमेशा हमारा साथ देती है इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंजल ऐश अगला गाना आपके पूरे परिवार के नाम, वेद दिनों के नाम और आपके लिए भी खासकर। श्यामा जी काफ़ी दिनों बाद आपका साथ हमें मिल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी गुदौ जी, देन वी हैव गीता, सोनम, विदुर, उत्तम सब बड़े ही प्यार से हमारे इस लाइव से कनेक्टेड हैं। और यस रोशनी देव जी अगला गाना आपके नाम हम करेंगे, कभी अलविदा ना कहना। और राइट सूट जी मौका मिला तो इस फिल्म का गाना हम ज़रूर आपके लिए चलाएंगे। संध्या, हाय संध्या कैसे हैं आप। और चलिए गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में कुछ और डेडिकेशंस हम इंक्लूड करेंगे।
1: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। चलिए मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। ऑब्वियसली जो फिल्म है इसमें नजर आए थे सलमान खान, साथ में थी भाग्यश्री। लेट 80s में ये फिल्म आई थी शायद, हाँ। और ये फिल्म लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के हैं। और ऐसे में गानों का ये जो सिलसिला है चले इसे आगे ले जाते हैं। देखते ही देखते रात के 8:15 बज चुके हैं। जी हाँ, अगला जो तराना है जूली फिल्म का गाना होगा, माई हार्ट इज़ बीटिंग। मीनाक्षी जी गाना चाहता है आपके नाम परमेश जी की ओर से।

0: गाना चाहता है उनकी प्यारी वाइफ कविता के लिए. वी हैव विमला लक्ष्मण जी जो हमारे साथ जुड़ी है, आशा जी है. त्रिनेश, गाना आपके लिए भी हम डेडिकेट करते हैं. देन वी हैव निश. संध्या जी, पुराने गाने उतने हम नहीं चलाते हैं, लेकिन अगला गाना आपके और आपके भाई नुरमान के लिए. ऑब्वियसली दीपक सिंह जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं. एंड शबीना की ओर से गाना जाता है शिवम और कृष्णा के लिए. एंड चंदा जी बनाके से हमारे साथ जुड़ी है. वी हैव छाया जी एंड सुबिराज जी शामुनी से हमारे साथ कनेक्टेड है. देन वी हैव रोज. पूनम की ओर से गाना जाता है उनके हस्बैंड मनोज के लिए. और इस समय दीपक जी मोचिदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. देन वी हैव दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, सभी अपादु परिवार के नाम जो रोशनुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो चलिए साथ देते रहिए हमारा यू ही ऑन रेडियो मनोरंजन, इन योर दिलों की आवाज.
1: You're listening to RM3 Radio.

भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

हमारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ।

से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: दिलों की आवाज़।
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते रात के 8:30 बजने को है और ऐसे में बढ़ते हैं अब इस अगले गाने की ओर। किनारा फिल्म का ये जो अगला तराना है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, लता जी और भूपिंदर सिंह जी की आवाज़ों में जाता है देविका जी की ओर से उनके हस्बैंड विशाल के नाम और बेटे कार्तिक के लिए। शकील जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव समीरा, रजनी, सरामा, कविता, रॉबी और इस समय बड़े ही प्यार से जो है फिनिक्स से रिहाना हमारा साथ दे रही है, गानों को पसंद कर रही है। तो चलिए गाना आप सभी के लिए
2: चल। होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया।

0: दिलों की आवाज,
1: चले दिलों की आवाज़। इस प्रोग्राम में बड़े ही प्यार से आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और इस इवनिंग को हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है मेमोरेबल बनाने की और ऐसे में अगले गाने की और हम बढ़ते हैं। और अनीता जी इस समय फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रही है। अगला तराना इनकी ओर से, इनके सभी फैमिली के नाम करते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: चले दिस इज दिलों की आवाज ऑन रेडियो मनोरंजन। और यहां पर अगला गाना हम किरण जी आपके नाम करते हैं, कनाडा वैंकूवर से हमेशा हमारा

साथ देते हैं। यही गाना माधुरी जी आपके लिए भी चल पड़ा, यही गाना परी जी आपके लिए भी चल पड़ा, और यहाँ पर बस कुछ ही मिनटों में हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होने को चला। और अभी के लिए ये गाना हो जाए हमारी प्यारी सी महक के नाम, जो इस समय मॉरिशस में है, और विशिंग यू अ लवली टाइम हियर इन मॉरिशस। और साथ में आपके साथ मौशमी दी और नीलाद्री दा भी है, तो आप लोगों के नाम इस गाने को हम करते हैं। और यही गाना दमन आपके लिए भी, टेकन फ्रॉम द मूवी कलाकार, किशोर दा की आवाज़ में, नीले नीले अंबर पर।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: और चले कब हमारा ये जो आज का प्रोग्राम शुरू हुआ और इन सभी गानों को आपके लिए डेडिकेट करते करते इन सभी गानों को सुनते सुनते कब खत्म होने को चला पता ही नहीं चला। एंड इसी के साथ बारी है अब इस आखिरी गाने की और इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कल हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में दोपहर के 12 बजे। आज के लिए आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लिसनर्स ने हमारा रेडियो के ज़रिए साथ दिया और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे टिकटॉक लाइव से जुड़े उसके लिए भी थैंक यू सो सो मच। रात के 9 बजे से रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे और बस ऐसे ही रेडियो मनोरंजन से जुड़े रहिए, जब भी मौका मिले हमें सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप सभी को, अपना ख्याल रखिए और हमारा साथ यूं ही देते रहे। धन्यवाद।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: सब कोई के नमस्ते और आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। आज के रात है 28 सितंबर 2026, लेंदी के रात और 9:03 होलबा। आज के दिन थोड़ा भारी रहल और मौसम भी उतना अच्छा नहीं रहल और फजर इधर उधर के कुछ खराब हमने के समाचार भी मिलल, लेकिन ई दिन पूरा हो गल और आप सब कोई के एगो अच्छा शांति और सुकून भरल शाम खातिर रात्रि खातिर हमने एक बार फिर प्रस्तुत हो रही जा आपके मनपसंद प्रोग्राम के साथ। तो जितना भी काम करवा लोग के आज दिन काम करते बीतल और काल फिर से शुरू हुई, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत काम करवा कमल और विभा चिंतामणि की आवाज़ में।

रात के 9:09 होल बा और आप सबको के फोन कॉल सावता बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो गीत चली ये खास तौर पर पूर्णिमा फोकीरा जी के, पूर्णिमा फोकीरा जी जे हमेशा की तरह सुनते रहलन प्रोग्राम और आपके पूरा परिवार और आपके बहू, आपके समधिन, आपके जितना जिले भवन जा और SSIN हॉस्पिटल के आपके जितना दोस्त हवन जा, पूर्णिमा जी सब कई के नाम आपकी ओर से अगला गीत। और ये जो अगला गीत चली सुना नोयान के आवाज़ में कौन फूलवा, ये गीत के फरमाइश करत हवन विजय बेनी प्रसाद जी, आप शामुनी से हवा और शामुनी

कि आपके एगो दोस्त हवन जिनकरा सब कोई गुरुजी नाम से जाने लन जा, उनकर नाम है गणेश जगनारायण, और साथ में आपके दोस्त शास्त्री बनोमाली जी मोहताबा से हवन। ई दोनों जना के साथ साथ आपके दोनों बेटी आपके पत्नी के नाम ई अगला गीत द विजय जी आपके ओर से सब सुने होला लोग के भी नाम ई अगला गीत, और साथ में गाँव गोप के सुनीता जी अपन बहन विमाला के नाम ई अगला गीत करत हवन। विमाला जी के बेटा विदेश से आल रलन और काल फिर से अपन सफर तय करियन, अभी पकिंग चलता। त विमाला जी आपके बहुत बहुत शुभकामना, आपके बेटा के सफ़र अच्छा रही, और सुनीता जी भी हमेशा खुश रहेलन आपके खातिर गीत मंगते मंगते। तो चला ई अगला गीत आप सब कोई के नाम।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्या...

से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

और आज के जिन दिन रहल बहुत जगह पानी बरसल बा, बहुत जगह मौसम उतना अच्छा नहीं रहल। आज ठंडा भी करा था, जितना गर्म काल कर ले रहल उतनी ही ठंडा आज करा था। तो आप सब कोई अपन अपन ख्याल रखा जा और हमने के सड़क पर आपके बहुत जस्ती सावधानी चाहिए बरते के, काहे कि दिखत हवा कैसन कैसन खबर रोज मिलता और एक दिन में 3-4 ऐसा बुरा बुरा खबर मिलता जहाँ पर दुर्घटना हो ले जाता। तो जब पानी बरसेला हवा हवा रहेला तो आपके चाही जो सावधानी बा ओके दुगुना कर देवे के, और ये बखत जे आपके घर से नहीं निकले के ज़रूरत हुई, कोनो ख़ास वजह नहीं हुई निकले के, तो नहीं निकला बहुत ज़रूरी रही तभी रात के बखत निकले के चाही। और अभी ढेर कोई दिखत है जा निकलत हवा जा कोनो ख़ास कारण खातिर, लेकिन जोन काम अभी करबा जो मुनाफा आपके अभी होई ओकर से कितना आगे जाइबा, तो जोन चीज जैसे जाता जाए दा मालिक बा सब कोई खातिर सब ठीक हो जाए। और अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन हमने के मेरा भाई दमिया, आप मौदार ब्या से हवा और आप बोलत हवा कि ये जोन अगला गीत चली बिजमावती संपत के आवाज़ में गीत गवाए, ये आप पूरा पायजा परिवार दमिया परिवार और अपन बेटी और दामाद के नाम करत हवा। और साथ में उधर फोंजुसा के उमा जी, आप भी एगो शादी के गीत की फरमाइश करत हवा, कहे कि आपके परिवार में एगो शादी चलता, तो आपके बहुत बहुत शुभकामना, पूरा परिवार के बहुत बहुत शुभकामना। और जितना कोई अभी हमने की सुनत हवा जा और बिजमावती संपत के गीत खुश रहे लजा सुने के, तो चला आप सब कोई के नाम गीत गवाई में जाना है रे चंदा।

गीत गवाई के बाद जो अगला गीत चली वह सुनीता ननकू के आवाज में धरिला चरनिया तोहार। ये गीत के मांग करत हवन सीला अपन पति सुरेन अपन सब नाती पोता रुद्राक्ष यौवन कबीर श्लोक अपन बेटी लोग के नाम शशि किरण सोनम के नाम और हंसली के नाम।

जगदम्बे भवानी के परगावल गीत सुनीता ननकू के आवाज़ में फ्लिक ऑफ लक से हमने के जे सुनत हवन अनीता जी, उनकर नाम भी उनकर पूरा परिवार के नाम।

सुनीता ननकू के आवाज़ में अंबे भवानी के बाद अगला जन गीत चली कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में नया सिरे ये गीत मांगत हवन हांसले अपन सास प्रेमिला के नाम

नीरज गुप्त मधु के आवाज में हेले साबुन हेले लुंडा, ये गीत खास तौर पर लविनी सैंपिया के अफेज के मांग पर। अफेज, आपके मनपसंद गीत आपके नाम।

सुना नोयान के ई जबरदस्त गीत के बाद अगला जन गीत चली संभावती दुमन के आवाज में और ई गीत के फरमाइश करत हवन ललिता अपन सब बहिन लोग के नाम और पूरा परिवार के नाम जित जोले से हवन और उधर छोटी पोला जी से ई गीत अपन सब बहिन लोग के नाम करत हवन अपन आत्माराम भैया और हरीश भैया के नाम भी और जितना कोई भी अभी हमने के सुना था वजह उधर वाकवा से सुदेवी जी भी ये गीत अपन सब बहन लोग के नाम कर रहा था वन मालेंगा के सब रामरतन परिवार के नाम और पूरा कुशल परिवार के नाम

संभवती दोमन के आवाज के बाद जो नगला आवाज अब सुनाई दे वह सत्यम गणपत के आवाज में छोटे मोरे नकुआ छोटे मोरे फुलिया और इगेत खास तौर पर पीतों के अमृता गणेश के ओर से उनकर पोती सोनिया परी और उनकर बेटा विहान और बहू मीनाक्षी और बेटी पूनम के नाम

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Bhojpuri Tadka.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. Agla geet, ego dusra Bhojpuri संगीत के सम्राट बसंत सुपोल की आवाज़ में लाल लाल फुलवा ये गीत ख़ास तौर पर मोतैलों के गीता जी के नाम गीता जी जो बहुत प्यार के साथ अभी साथ देवत हवन।

मैं अभी काम कर रहा था जहाँ, और काम करते करते हमके सुनत हवा, या फिर आप ड्राइव कर रहा था और सुनत हवा, एक बार फिर अच्छा से गाड़ी चलाइया, बहुत सावधानी बरतिया और स्पीड लिमिट के पूरा ओके अमल में अन्या, और जे आपकी तरफ से सावधानी रही तो हो ही सकेला कि जो कुछ इधर उधर घटे के होते सकी वो नहीं घटे, और हमने के शुभकामना आप सब कोई संगे बा। आज के दिन काफ़ी भारी रहल, आज के दिन काफ़ी थकान होला दिन रहल, लेकिन मौसम भी उतना ठीक नहीं रहल, लेकिन यही उम्मीद यही कामना के साथ ई रात के समाप्ति करब जा कि आवे होला जो दिन बा काल के दिन उ सब कोई खातिर बहुत अच्छा दिन रही, और आपके चाहे ई जो बदलता मौसम बा ओकर ख्याल रखते हुए अपन ख्याल रखे के कहे कि कबो ठंडा करता कबो गर्म करता, और हाँ ये वो मौसम है जब सब कोई बीमार पड़ेला, और अभी लड़का लोग एग्जाम में चलता तो दुगुना सावधानी अब चाहे बरते के। और अगला जन गीत चली रागिनी सवारत और लीलो माथुर के आवाज़ में, मड़ैया में आग। ई गीत के फरमाइश ख़ास तौर पर बगीज़े वेजा के नसीम के ओर से, नसीम अपन बहिन खतीजा के नाम ई गीत करे चाहत हवन और बोलत हवन कि उनकरा बहुत मन बा बहुत दिन से ई गीत सुने के। तो नसीम जी आपके मांग पर चला ई गीत संगे सुनी जा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: Jitna koi aaj apan janamdin manawat hawa ja, वैचित सितम 28 सितंबर के आप सबको के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। चाहे आपके जन्मदिन आज से अगते भी मना देला और अभी से अक्टूबर महीना तक मनेबा, कहे कि भोजपुरी तड़का में हम आपसे फिर से मिलब आवत सेमैन के, आवत मंगर के। तब तक जितना कोई के जन्मदिन बा, आप सब कोई के हैप्पी बर्थडे।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन।

0: Radio.
1: 101.1 Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुनहरी पल, सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: देखा जाए तो ज़िंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफ़ी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए। एक आवाज़, एक धुन और आंखों के सामने बचपन की गलियां, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और घर का वो पुराना रेडियो, सब कुछ जिंदा हो जाता है। और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफ़र पर, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

0: वैसे दोस्तों, अगर दिल कभी उदास होना तो पुराने बॉलीवुड के गीत उसका सबसे खूबसूरत इलाज होते हैं। इन सुरों में एक अजीब सी ताकत होती है जो मुस्कान भी लाती है और आँखों को ज़रा नम भी कर देती है। इसलिए तो हम आज सिर्फ गाने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने आए हैं। तो चलिए हर नगमे के साथ एक नई याद और एक नई मुस्कान बांट देते हैं।
1: आपका ये बजा ही सही

आज की रात को और भी खास बनाइए उन गीतों के साथ जो कभी आपके होंठों की मुस्कान हुआ करते थे। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है। वैसे जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं ना तो दिल अपने आप मुस्कराने सा लग जाता है, और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। तो साथ यूं ही निभाते रहे, अगला गाना आपके नाम।

0: एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।
1: बाहर

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर आपके नाम

0: 119 kilowatt, 119 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: इश्क तोड़ा तोड़ा दोनों जगह दोनों एक दूजे के होने लगे अब ना हल्की सी भी आए कभी दूरी।

0: जाने ये एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस.

0: सिटी रेडियो हर पल आपके साथ
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस

0: BBC Radio 24 hours a day.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: नमस्कार
3: श्रोतृंदी हृदयपूर्वक नमस्कार
4: अवरुम वाकम
2: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

24 hours a day. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।